0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वो क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आप हो हमारे अपने, हमारे साथी, हमारे हम सफर। इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 5:03, नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ठंड का क्या असर है, आह बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी तेज हवाएं बह रही हैं, सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। अपने साथ स्वेटर, थोड़ा सा आप पालतू पुलोवर वगैरह पहन लीजिएगा टू कीप योर सेल्फ वार्म। एंड यहाँ पर आपके दिल को सुकून दिलाने के लिए द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, चंद सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स एज यूजुअल सुबह के 7 बजे तक। सो नीतू के हम सफर बनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आपके मैसेजेस भी ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। ऑन सैंक कैट नफ नफ दोज नफ कात 5499 1294, यादों की दुनिया में स्वागत है आपका।

0: कभी तो हंसाए।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Masti.
3: जिंदगी को समझना इतना आसान भी नहीं है और जिंदगी क्या क्या नहीं सिखाती है। हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। बस आप अपना काम करते चले, सही रास्ते पर चलते रहे। एंड 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग आपको, हैव अ लवली डे। पद्मिनी, आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए। साच हॉस्पिटल से अगला गाना मिस्टर जयशन, तेम्बा जीवन, ओमिरा नंगोटिया, आकाश, शर्वन रामदेवाल, साथ में है मेविन। एंड एज यूजुअल हमेशा हमारे हम सफर बनने के लिए थैंक यू। धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौदार बैसे, थैंक यू आपको हमारे हम सफर बनने के लिए। एंड

प्रणाम आपको भाई सूरज शर्मा, सजादा परिवार, एंड बस गानों के जरिए अपने मूड को सेट करते रहें और अपने दिन की शुरुआत भी। शुभ दिन निधु, यादों की बारात चल रही है तो फिर अगला गाना आपके नाम, रोशन एंड आपके पूरे परिवार के लिए। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती, गुड मॉर्निंग अब्दुल अंसारा बानू, हैव अ नाइस डे अहेड। एंड अगला गाना आपके नाम भी चलाते हैं यहाँ पर इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजु, कृषा, मायशा, केशव, नील, तानिया, पूरे परिवार मोता ब्लॉश से, एंड एज यूजुअल माधव परिवार, आशनी, रेखा, सुरेखा, एंड यू टू ज्योति शातु बिनागस से। आज अंजु का बर्थडे है, शुभकामनाएं आपके मामा, पूरे परिवार ब्रह्मस्थान से, ललिता एंड जीतन फैमिली, कुमार एंड देवी चंद फैमिली, साथ में शाम भी शामिल हैं। तो अगला गाना आपके लिए भी, और यहाँ पर मिस्टर टोनी फ्रॉम घोषबुआ कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। हाँ, कभी कभी हम हद से ज़्यादा भी थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस जैसे कि हमने कहा ना, आप सही मार्ग पर चले। नमस्कार जी, अगला गाना आपके नाम, थ्वाला हिदा, हिबा, रोज, ननलोल फैमिली फ्रॉम क्यूपीप, एंड हाई नीत, गुड मॉर्निंग, विश यू अ हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग। आप हो सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, साथ में पल्लवी, विशाल, उमेश, एंड टू रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

6:23 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। हैप्पी बर्थडे विंशिता वुसाई ऑफ कॉन्डोमास कपावे, आपकी मामा नीता, पापा हेमा हैं साथ में वुसाई परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार। फर्स्ट बर्थडे टू यू बेबी दीवारा ग्रेसी लुबोम घोंबे, लवेश लीना, रवेश, प्रिशा, लवशा, सभी दियवांस की तरफ से ढेर सारा प्यार। अगला गाना आपके नाम चलाते हैं, नए पुराने गाने। थैंक यू देवी जी, शुभ दिन आपको एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको कविता रिया दुफ्रे से पूरे परिवार के लिए। सो वंस अगेन आपको याद दिला देते हैं कि थोड़ी ही देर में 6:30 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद विदिता के साथ मॉर्निंग बीट।

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना, ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। विदेश में दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एम्बिशन क्रूज शिप पर लगभग 1700 यात्रियों को पेट संबंधी संक्रमण की आशंका के चलते रोका गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी नेता शी जिनपिंग की आज बीजिंग में उच्च स्तरीय वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध और मजबूत हुए हैं। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। औपचारिक बातचीत से आगे बढ़ते हुए दोनों नेताओं ने महाद्वीप के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता तक पहुंच पर साझा रणनीति बनाने की नींव रखी। विस्तार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम नैरोबी स्थित स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ खास मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों तथा मॉरिशस और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।

0: We had a great meeting with the Prime Minister. We appreciate his coming to Nairobi. We appreciate his ideas and insights and his contribution to the success of this Africa Forward Summit. And it provides an opportunity for us to prosecute our position, joint position of Mauritius, Kenya, and the rest of the continent, to contextualize our relationship with the rest of the world so that we are better understood and we can drive our interests using the Africa Union, working together, because the situation at the moment requires solidarity.
1: डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार केन्या कई क्षेत्रों में मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खास रूप से व्यापार क्षेत्र में. उन्होंने दोनों देशों के बीच खास संबंधों को भी रेखांकित किया.
2: I want to thank President William Ruto because he's made a wonderful conference. It was very, very positive. As the President said, we need this solidarity. It was a very successful conference and we're moving forward from this. I reminded President Ruto that I first came to Kenya to meet President Jomo Kenyatta with my father, Sir Steve Sagawa. And he sent Tom Mbuya,
0: yes,
2: who was a constitutional lawyer, yes, to help us draft our constitution before independence.
1: बैठक में अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद जारी नैरोबी घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. उन विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों को अमल में लाने पर ध्यान दिया गया जिनकी घोषणा अफ्रीकी महाद्वीप की मजबूती और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से की गई. अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया. इन दो दिनों के दौरान युवा अफ्रीकी उद्यमियों ने भी सम्मेलन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने इमानुएल माक्रों और विलियम रूटो जैसे नेताओं के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की. सम्मेलन के अंतिम घोषणा पत्र में राष्ट्र नेताओं और सरकारी प्रमुखों ने कई प्राथमिकताओं पर जोर दिया. ऊर्जा अवसंरचना का विकास, डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, अफ्रीकी संसाधनों का स्थानीय स्तर पर अधिक प्रसंस्करण करना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना. घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार की भी मांग की गई, क्योंकि नेताओं का मानना है कि अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं अब भी अत्यधिक ऊंची उधारी लागतों से प्रभावित हो रही हैं. खबरों में आगे, मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है. 4-9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई. इस पहल का उद्देश्य एक कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है. इसके लिए यूरोपीय संघ और वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया गया. साथ ही सेशल्स, कृषि खाद्य संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को भी मजबूत करने की योजना है. मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल को सुनते हैं, जिनसे बात की शैली नियबन ने विवरण जो है याचना मिश्रा का है.
3: प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख क्षेत्र है बंदरगाह का विकास. मंत्री ने बंकरिंग, ड्राई डॉक और ग्रीन पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया. ये ऐसे समय में किया जा रहा है जब हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में समुद्री यातायात में वृद्धि देखी जा रही है. सरकार ये भी बताती है कि वह मॉरिशस के मछुआरों को बेहतर समर्थन देना चाहती है, विशेष रूप से अर्ध औद्योगिक और औद्योगिक मछली पकड़ने के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर. इस संबंध में चुना फिशिंग समझौते को लेकर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है. एक और महत्वाकांक्षा यह है कि मॉरिशस को ब्लू कार्बन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया जाए, जिसमें मैंग्रोव और समुद्री विविधता तंत्र शामिल हो जो कार्बन को संग्रहित कर सके, उसको मिटा सके. सरकार इसके अलावा मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती जो कि एक सीवीड है, और दवा तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को

0: विकसित करने की भी योजना बना रही है।
1: काजिनो एम्प्लॉयीज यूनियन का कहना है कि मॉरिशस के काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। क्यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस के काजिनो ने सरकार के खजाने में लगभग 1.3 बिलियन रुपए टैक्स के रूप में जमा किए हैं। यूनियन के प्रवक्ता शोविन सनासी ने कहा कि ये आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान से अलग हैं। प्रधानमंत्री ने सांसद कविराज रुकनी के एक संसदीय प्रश्न के जवाब में कहा था कि 2015 से 2025 के बीच काजिनो डी मोरिस को कुल 1.9 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। शर्विन सनासी ने यह भी कहा कि काजिनो डी मोरिस में लगभग 500 कर्मचारी हैं और यहाँ कर्मचारियों की अधिकता नहीं। हालांकि उन्होंने कंपनी के प्रबंधन में कई खामियों की ओर भी इशारा किया। उनको सुनते हैं विवरण याचना मिश्रा का है।
2: Il y a un paradoxe parce que ça casse 1,3 million là, c'est casino qui peut générer, qui peut introduire dans différents cas de taxes qui est là, imposé le banc casino.
0: 1.3 बिलियन रुपए की रकम कैसिनो की ही कमाई है जिस पर कई प्रकार के टैक्स लगते हैं। कैसिनो कहीं ना कहीं मुनाफा कर ही रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक ठोस कार्रवाई चलाई जाए समस्या का पता लगाने के लिए। 10-15 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि कैसिनो मुनाफा नहीं कर रहा है और नुकसान होता जा रहा है। 10-15 साल तक कोई समाधान नहीं ढूंढा जा सका कि आखिर समस्या का जड़ क्या है, क्या प्रबंधन जिम्मेदार हैं?
2: Trouver une solution et guetter que ça est vraiment quelque chose qui peut défaillir, est-ce que c'est management?
1: गौरतलब है कि काजिनो डी मोरिस के पास इस समय 3 काजिनो हैं, एक क्यूपिप में, गॉबे में और कोडो में। हालांकि कोडो स्थित काजिनो फिलहाल संचालन में नहीं है। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने रविवार 10 मई को पेचित रिवियर में हुई घटनाओं के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत पर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार अधिक कठिन बना रही हैं। निर्मा नारायण रेड्डी, आशी बेचू और याचना मिश्रा।
0: स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए संदेश स्पष्ट है, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है। संघ के अनुसार ऐसे घटनाक्रम पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहे हैं और अब यह पूरी तरह अस्वीकार्य हो चुकी है। डॉक्टर बुज्या कृष्णदेव ने सख्त कानूनों की मांग की है, साथ ही सामयू की टीमों के लिए आपातकालीन सेवाओं के दौरान बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने भी पुलिस कमिश्नर से अपील की कि चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि वे जनता को सुरक्षित उपचार और सेवाएं दे सकें।
3: Moi, je lance un petit appel au commissaire police qui lui prend un stand bien dire contre sa man agression.
0: मैं मांग करता हूं पुलिस कमिश्नर से कि वे ठोस कदम उठाएं। ये अस्वीकार्य है कि कोई व्यक्ति काम पर जाए और जनता से कोई उसके कपड़े ही फाड़ दे। कुछ लोगों पर तलवार से वार भी किया गया है और हमारे पास इसका सबूत भी है। कुछ बदला है, बदलना बाकी है और बदलना ही होगा। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि राधाकृष्ण साध्या ने अस्पतालों में स्टाफ की कमी की ओर ध्यान दिलाया जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम और भी कठिन हो गया है। उनका मानना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने यह भी अपील की कि मंत्री उनके प्रतिनिधियों से मिले और उनकी मांगों को सुने।
4: On a un problème de staff également dans le ministère de la Santé. Et il est important, nous renforcer la loi. Viens avec une mesure beaucoup plus...
0: कर्मचारियों की भारी कमी है, कानून को ठोस, कदमों को ठोस होना चाहिए।

0: प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स एक्ट एक पुराना कानून बन चुका है। पुलिस को अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, पुलिस कमिश्नर को कदम उठाना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को श्रमिक संघों की आवाज सुननी होगी। डॉक्टर और सांसद फहद उमिया ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हिंसा की घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने हमलावर के खिलाफ नेम एंड शेम यानी नाम और बदनाम करो नीति की सलाह दी है। साथ ही सामू एम्बुलेंस में 24 घंटे पुलिस मौजूदगी, डैशकैम और बॉडी कैम लगाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा बीमा की भी वकालत की। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि सरकार और मैं खुद कोना कोना छानकर आपको ढूंढ निकालेंगे ताकि कानून फैसला सुना सके। ठोस सजा मिलनी चाहिए, नेम एंड शेम होना चाहिए, उन हमलावरों की तस्वीरें डाली जाएं हर जगह पर। सभी सामू और एम्बुलेंस में डैशकैम होना चाहिए ताकि पहचान की जा सके। यदि जरूरत हो तो एम्बुलेंस चालक पर बॉडी कैम भी लगवाया जा सकता है।
1: Pour recorder et identifier si besoin même ambulancier besoin d'un body cam।
0: बढ़ते हमलों को देखते हुए डॉक्टर यूनियन और जिम्मेदार सभी पक्ष तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जनता को सुरक्षित आपात सेवाएं प्राप्त हो पाएं।
2: खबरों में आगे, इंडेंचर्ड लेबर रूट कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडेंचर्ड लेबर रूट प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है जिसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर के गिरमितिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। इस पहल के तहत सुरिनाम, फिजी, ट्रिनिडाड और टोबेगो सहित विभिन्न भारतीय मूल के प्रवासी समुदायों के लिए अभिलेख एकत्र किए जाएंगे। इन दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शोधकर्ता और अपने पूर्वजों की जड़ों की खोज करने वाले लोग इसे का लाभ उठा सकें। इंडेंचर्ड लेबर रूट प्रोजेक्ट की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति की अध्यक्षा फरजाना गुंडर ने कहा कि परियोजना का एक और उद्देश्य गिरमितिया इतिहास से जुड़े पैतृक गांवों का मानचित्र तैयार करना है। उनके अनुसार ये कार्य जटिल जरूर है लेकिन साझा इतिहास और सामूहिक स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनको सुनते हैं उनसे बात की आशी बाचू ने विवरण याचना मिश्रा का।
3: What we're trying to do is to collate all the data from
0: हम डायस्पोरा से सभी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ डिजिटल रूप में उपलब्ध हो। शोध करने वाले वेबसाइट पर जाकर डेटा देख पाएं। जो लोग अपनी जड़ों का पता लगाना चाहते हैं वे भी वेबसाइट पर जाकर अपने गिरमिटिया पूर्वजों के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हम पुराने गांवों का नक्शा भी बनाना चाहते हैं जो इतना आसान भी नहीं है क्योंकि गांवों के नाम बदल गए हैं। हम गिरमिटिया के स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते
3: हैं।
2: विदेश की खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग आज गुरुवार को बीजिंग में एक उच्च स्तरीय वार्ता करने जा रहे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच होने वाली इस चर्चा में व्यापार, ईरान और ताइवान के मुद्दों के हावी रहने की उम्मीद है। बुधवार को चीन पहुंचे ट्रंप का बीजिंग में रेड कार्पेट और ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक राजकीय भोज के साथ भव्य स्वागत किया गया। 2017 के बाद लगभग एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन पर चीन में मानवाधिकार आलोचना के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, वे भी राष्ट्रपति

ट्रंप के साथ चीन पहुंची हैं। और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामले सामने आने के बाद करीब 1700 यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कई यात्रियों में गास्ट्रोएंटेराइटिस जैसे लक्षण पाए गए हैं। एम्बिशन नाम का ये क्रूज शिप 8 और 9 मई को ब्रिटेन के बेलफास्ट और लिवरपूल से यात्रियों को लेकर फ्रांस और स्पेन की यात्रा पर निकला था। जहाज पर लगभग 50 यात्रियों में तेज पेट खराब होने और उल्टी दस्त जैसे लक्षण देखे गए हैं। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर कुछ तेज़ हवा पाई जा रही है, आसमान में कुछ बादल भी हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कुछ कोहरे भी छाए रह सकते हैं। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:31 पर, सूर्यास्त होगा 5:41 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और मजबूत। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पॉक विकसित करना। ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर जताई चिंता। और विदेश में दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एम्बिशन क्रूज शिप पर लगभग 1700 यात्रियों को पेट संबंधी संक्रमण की आशंका के चलते रोका गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी नेता शी जिनपिंग की आज बीजिंग में उच्च स्तरीय वार्ता। 6:52 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कारियर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Hukut Royal 69 year old श्री गौकरण जांगी जो माओ से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान गुटवायाल कथस से उठाकर दाह संस्कार के लिए देवखया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मेलविल ग्रांगुब में 66 साल के 66 year old श्री सुनील दत्त पसन जो मिशेल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान मेलविल घोंगुब से उठाकर पहले घोंगुब के सेमिशेल गिरजाघर ले जाई जाएगी। फिर अंतिम संस्कार

के लिए गोगुब की स्मशान भूमि फिनरल टुडे एट 2 PM। रामाउटर लेन इजिडोज में 40 साल के 40-year-old श्री याविश शर्मा रामाउटर, श्री याविश शर्मा रामाउटर जो याविश से जाने जाते थे और MBC के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी माँ मित्रानी रामाउटर के मकान रामाउटर लेन इजिडोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए इजिडोज के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। तुलसीदास गली क्रेव में 67 साल की 67-year-old श्री कमलेश रामजिंग, श्री कमलेश रामजिंग जो बुलमा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती जयंती रामजिंग के मकान तुलसीदास गली क्रेव से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआ मौसाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एवेन्यू फ्लामिंगो आल्बियो में 80 साल की 80-year-old श्रीमती सुमंती दिगम, श्रीमती सुमंती दिगम जो मैडम निरोध से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान एवेन्यू फ्लामिंगो आल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 11 AM। नंबर 46B हॉपर रोड ग्लेनपार्क वाकवा में 71 साल की 71-year-old श्रीमती लीलावती टोकुर, श्रीमती लीलावती टोकुर जो अमृता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेटी किरण हिरालुल के मकान नंबर 46B हॉपर रोड ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। गुटवायाल पुजदे फ्लाक में 75 साल के 75-year-old श्री नवींद्र सुनाराम, श्री नवींद्र सुनाराम की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:15 बजे इनके मकान गुटवायाल पुजदे फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिमोंग पुजदे फ्लाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15। कौलाबू टेहोज में 89 साल की 89-year-old श्रीमती बिदवंती नोहर, श्रीमती बिदवंती नोहर पैदाइश नाम रघुनाथ जो मोहबिया क्वाफिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू टेहोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशा त्यागोज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लातापी रोड ब्रिजे वैद्य में 77 साल की 77-year-old श्रीमती तारामती लौटन, श्रीमती तारामती लौटन पैदाइश नाम जगरूप जो तारा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान लातापी रोड ब्रिजे वैद्य से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गुटवायाल इसकालिये में 80 साल की 80-year-old श्री परमानंद्र उचाना, श्री परमानंद्र उचाना जो रामोती से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे श्री संजीव उचाना के मकान गुटवायाल इसकालिये से उठाकर दाह अंतिम संस्कार के लिए लासूजिन लिस्कालिये की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 10 AM। अविनी आजाली मोसेलमोस सैन जॉन कैट्रोबोन में 75 साल के 75-year-old श्री क्रिश्चंद सुबनोथ, श्री क्रिश्चंद सुबनोथ जो इंदर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान आविनी आजाली
Moses

0: अल्मोस सेंट जॉन कार्ट्रोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 11 AM। सोल्फेरिनो नंबर दो वाक्वा में 68 साल की 68 ईयर ओल्ड श्रीमती धनमांटी फुगू पैदाइश ना भंटुआ जो धनमांटी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे के दामाद श्री उमेश दसुया के मकान सोल्फेरिनो नंबर दो वाक्वा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बालांस सोल्फेरिनो नंबर 5 वाक्वा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। कालीमाई रोड बाउलू में 73 साल की 73 ईयर ओल्ड कुमारी भूमावती गुरुवादू कुमारी भूमावती गुरुवादू जो दमन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। ये टेम्पल रोड बेल्विमोहल रहती थी। अर्थी जो हैं श्री दिनेश शंकर गुरुवाडू के मकान कालीमाई रोड बाउलू से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्रिमेशन रोड पीटों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। ऋषि दयानंद गली ख्वाबुचिक में 75 साल की 75 ईयर ओल्ड श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाइश नाम ओखेज जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके पति श्री देवनारायण मोहन के मकान श्री देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद गली ठुआबुचिक से उठाकर दाह संस्कार के लिए ठुआबुचिक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। प्रोविडेंस रोड पोस्ट फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर ओल्ड श्री धुरंद्रनाथ जीवन जो संजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके बेटे श्री अनिकेत जीवन के मकान प्रोविडेंस रोड पोस्ट फ्लैक से उठाकर दाह अंतिम संस्कार के लिए पोस्ट फ्लैक आले मांग की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 11 AM। बुआशेरी रोड मोका में 69 साल के 69 ईयर ओल्ड श्री दयानंद ओकुल जो ज्ञानदेव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान बुआशेरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 1 PM। महात्मा गांधी रोड पेटी गाफ्रे में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड श्रीमती शांति भोलू पैदाइशी नाम रामदोआ जो रेबे से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे श्री विक्की भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पेटी गाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काप मालोगे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: घड़ी मिलाते चले 2:07 हुए हैं।
2: मॉर्निंग बीट A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti in the mix.

0: सुबह के 7:07 हुए हैं। गुड मॉर्निंग,
1: a good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: 7:07 और हम 7:09 ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग नीतू।
3: गुड मॉर्निंग वेदिता। और आते ही अपनी बीट पर ढोल नगाड़ा बजाने लगी।
0: अब मैं क्या करूँ, मॉर्निंग में यही करना पड़ता है। थर्सडे में थोड़ा सा लोग जो है ना, उनको पता है कि कल फ्राइडे है, थोड़ा लेजी फील करने लगते हैं। तो उनके अंदर की जो एनर्जी है ना, उनको थोड़ा
3: बाहर निकलने लगती है।
0: या मॉर्निंग बीट है तो थोड़ा सा बीट कर करके थोड़ा सा निकालना पड़ता
3: है। और मौसम का क्या हाल है?
0: हाय हाय, आज मौसम
3: बेमान है
0: मेरे लिए। तो रोमांटिक है, यू नो आई लव विंटर। हल्की बूंदे, ऐसे हल्की बूंदे गिर रही
3: हैं। Oh my God, so romantic.
0: और रेनबो भी है।
3: And
0: you know I love rainbow.
3: अच्छा।
0: मॉर्निंग में जब आप घर से निकलो और आपके सामने खूबसूरत सा रेनबो हो, तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में ये जो कलर्स है ना, वो बिखर गए हैं।
3: तो ऐसे ही सात रंग के सपनों के साथ आगे बढ़ती चली।
0: आपने सात रंग के सपने चलाए थे?
3: सुना था।
0: Of course, मैं नहीं सुनूंगी, आपके गाने हो। थैंक यू सो मच नीतुषा। तो चलिए यहाँ से अब मैं करती हूँ अपने इस प्रोग्राम को जारी। साथ रहिएगा। डोंट फॉरगेट योर मैसेजेस ऑन 5491294। गेम्स होंगे, बर्थडे होंगे।

0: स्पोर्ट्स होगा और हमारी कुछ बातें भी।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
2: Radio Musti.
3: Hits, music only.
2: Feels a Musti.
4: We are the sounds of the streets. Ooh.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: बेबी डॉली मैं सोने दी। अच्छा चलो भाई, सोने की कितने सोने की गुड़िया। चलिए तो यहाँ पर सुबह के 7:22 हुए हैं, प्रीतिता आपके साथ है। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया कि नहीं किया कि अभी भी इधर उधर भाग रहे हो? अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देते ना। सुबह सुबह कहा था थोड़ा सा वॉकिंग थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, नहीं किया ना। क्यों टाइम नहीं मिलता? क्यों कैसे टाइम नहीं मिलता पता नहीं। आप अपने बारे में कुछ सोचते नहीं है, आपको सबकी पड़ी रहती है लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते। अरे 5 मिनट तो बैठ जाओ, आराम से चाय पी लो, आराम से अपने फ्रूट्स खा लो, ये तो कर सकते हो, इसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये कैसा लाइफ है आपका कि आप कैसी लाइफ है कि आप अपने बारे में 5 मिनट सोच भी नहीं सकते? तो क्या फ़ायदा, यानी कि आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते। चलो मैं आपको खुश करती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आपके फैमिली में किसका बर्थडे है? फैमिली में किसी का बर्थडे है या आपका खुद का बर्थडे है? आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, तो आप ऐसा करो, अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम भेज दो मुझे 5491294 पर। या तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे है और आप चाहते हैं कि हम किसी को हैप्पी बर्थडे विश करें, किसी को सरप्राइज़ करें, तो लोलो हाइपर मार्केट हमेशा की तरह आज भी, आज के हमारे बर्थडे ऑफ द डे के लिए, आज के हमारे जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल हैं उनको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मुझे नाम और फ़ोन नंबर भेजना होगा। तो जल्दी करें, हम लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से उनको सरप्राइज़ भी करेंगे और उनकी ओर से एक वाउचर भी देंगे।
3: रेडियो मस्ती,
0: हिट म्यूजिक ओनली,
3: फील्स अ मस्ती। Radio Musty.

0: अबे मुझे कितनी डांट पड़ने वाली है ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि समय हो गया है कि हम उनसे मिले जिनका आज है स्पेशल डे।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो आइए मिलते हैं उनसे जिनका आज स्पेशल डे है, देखते हैं कौन है हमारे साथ स्पेशल डे। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग,
0: कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ। आपको पता है कौन बात करी आपसे?
3: वेरिता।
0: ओह माय गॉड नो, ये कैसे पता चल गया आपको? नहीं कैसे पता चल गया आपको?
3: मुझे आपकी आवाज पता है।
0: आपको मेरी आवाज? ओह माय गॉड, आपको मेरी आवाज पता? तो आप रेडियो तो ये रेडियो मस्ती की दीवानी निकली प्रीति भी से। सर आपके लिए मैसेज, आपको पता है क्या है ना?
3: हाँ

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: ओ माय गॉड, प्रीति आप कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप?
2: हम बिले रहती हैं।
1: बिले, और आप रोज सुनती हैं रेडियो?
2: रोज सुनती
1: हूँ। ओ, तो आपको पता चल गया, जब घंटी बजी तो 7:30 बजे इस टाइम पे तो विदिता बर्थडे सरप्राइज करती है, कहीं मेरा तो टाइम नंबर नहीं आ गया। आप मुझे नहीं पता, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आया था और वो मैसेज में था, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ प्रीति। आपके बेटे हैं आरव, आपकी सिस्टर इन लॉ है पल्लवी, ब्रदर बाबू और सभी बिसे सर फैमिली जो है ना?
2: हाँ।
1: तो ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये सरप्राइज किसने भेजा है आपके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी सिस्टर इन लॉ ही होगी क्योंकि उन्होंने भी यही लिखा है। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको पता है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको एक वाउचर मिल रहा है जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर आज या तो फिर कल, लेकिन अपने आईडी कार्ड के साथ आपको एमबीसी आना पड़ेगा, ठीक है जी? और बाकी हमारे जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो आपको सारी डिटेल्स कॉल करके बता देंगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रीति। आपने पहचान लिया, आप हमारी रोज सुनती हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच साथ के लिए। अभी पार्टी तो बनती है, सो नेक्स्ट गाना खास आपके नाम।
2: थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय,
2: बाय बाय।
3: RM2 रेडियो मस्ती,
4: हिट म्यूजिक ओनली,
5: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।
1: जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, हैप्पी बर्थडे।

0: ऐसे गा गा कर बुलाना पड़ता है हमारे स्पोर्ट्स गुरु को। क्या कहें हम, सुबह के 7:40 हो गए हैं, बढ़ते स्पोर्ट्स की ओर।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: हाँ जी, चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और इसके लिए बुलाते हैं हमारे गुरु, हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद को। गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। प्रीमियर लीग टाइटल कौन जीतेगा, सस्पेंस अंत तक जाएगा लगता है। मैनचेस्टर सिटी हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए अंत तक लड़ेगा, इतनी आसानी से आर्सेनल को टाइटल उड़ा ले जाने नहीं देगा। पेप गॉर्जियोला की टीम तैयार है चैलेंज करने के लिए, टाइटल होप्स अलाइव, क्योंकि कल फिल फोडेन के 2 लाजवाब असिस्ट, एक बैक हील पास पर अंतुआन सेमेन्यो का गोल, फिर फर्स्ट हाफ में ही ओबा मामूश का गोल, और साविनो ने सिटी के गोल डिफरेंस को बेहतर बनाया 3rd गोल स्कोर करके। मैनचेस्टर सिटी 3 क्रिस्टल पैलेस 0। दोनों टीमों के दिमाग में आने वाले फाइनल्स हैं। सिटी FA कप का फाइनल खेलेगा चेल्सी के खिलाफ इस शनिवार को यानी परसों, और क्रिस्टल पैलेस उसके लिए प्रीमियर लीग से कुछ लेना देना नहीं है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में है, इसीलिए वो उसकी तैयारी में है। ऐसे में दोनों टीमों में काफ़ी बदलाव लाए गए, कई खिलाड़ियों को आराम पर रखा गया। इस जीत से मैनचेस्टर सिटी अब लीग लीडर आर्सेनल से केवल 2 अंक पीछे हैं। बराबर मैच बचे हैं केवल 2 मैच दोनों टीमों के लिए। इस सोमवार को, इस मंडे को आर्सेनल बर्नले का स्वागत करेगा, फिर अगले दिन बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और सीजन का आखिरी दिन द फिनाले संडे 24 मई को क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला। देखा जाए तो सिटी के लिए मामला थोड़ा टाइट है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहला मैच बोर्नमुथ के खिलाफ, बोर्नमुथ भी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन या यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन चैलेंजर हैं, यही बात एस्टन विला के साथ भी है। आर्सेनल के सामने होंगी 2 ऐसी टीमें जिनके लिए प्रीमियर लीग में कुछ बचा नहीं है। बर्नले तो भस्म हो गया, जबकि क्रिस्टल पैलेस के दिमाग में कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल होगा, जिसे जीतकर वो यूरोपा लीग में आ सकता है, पर अभी सिटी का गोल डिफरेंस 1 गोल से बेहतर है। कल फ्राइडे नाइट मैच, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन वाला मैच होगा, एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल। दोनों के पास बराबर अंक हैं, यानी 59.68 अंक, लिवरपूल गोल डिफरेंस पर आगे हैं। जो जीतेगा चैंपियंस लीग में जाएगा, ड्रो हुआ तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्नमुथ केवल 4 अंक पीछे हैं, ब्राइटन 6 अंक पीछे। सो कल जो जीतेगा वही सिकंदर चैंपियंस लीग टिकट जेब के अंदर। स्कॉटिश प्रीमियरशिप का निर्णय फाइनल डे मामला हो गया है। कल हार्ट्स और सेल्टिक दोनों जीत पाए।

0: हॉट्स ने 3-0 से फाल्कोर्क को हराया, जबकि सेल्टिक जीत पाया कठिनाई के साथ 3-2 से मदरवेल के खिलाफ। विनिंग गोल एक ड्रामेटिक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद पेनाल्टी पर रहा इंजुरी टाइम के आखिरी सेकंड में। सेल्टिक केवल एक अंक पीछे है। आखिरी मैच टाइटल डिसाइडर होगा सेल्टिक वर्सेस हॉट्स सेल्टिक पार्क में। वैसे कल रेंजर्स फिर से हार गया। लीग वन प्रमोशन प्ले ऑफ में स्टॉकपोर्ट 2-0 से स्टेवेनेज को हरा पाया। स्पेन के ला लीगा में चैंपियन बार्सिलोना हॉलीडे मूड में है। अलावेज ने बार्सिलोना को 1-0 से हराया। इस्पानियल 2 एथलेटिक बिलबाओ 0, विलारियल 2 सेविला 3, अलावेज 1 बार्सिलोना 0, रेताफे 3 मालोका 1। कोपा इटालिया जीत गया इंटर मिलान। फाइनल में इंटर मिलान ने लाजियो को 2-0 से हराया। इंटर मिलान के लिए सेरी आ और कोपा इटालिया डबल से मिलन। फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन अब आराम से ठंडे दिमाग से चैंपियंस लीग फाइनल की तैयारी कर सकता है। टाइटल चैलेंज लांस को 2-0 से हराकर पेरिस सेंट जर्मेन फिर से चैंपियन बना। बारात्खेलिया और एम्बाए का एक एक गोल। बचा है केवल एक मैच। पेरिस सेंट जर्मेन 7 अंक आगे है। अब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए ब्रिंग ऑन आर्सेनल। वैसे दूसरे मैच में ब्रेस्ट की हार हुई, स्ट्रासबर्ग ने उसे 2-1 से हराया। जोसे मोरिनो द स्पेशल वन रियल मैड्रिड में वापस आ रहा है। बातचीत एडवांस स्टेज पर है। हमेशा की तरह मोरिनो अपना पे पैकेज बहुत बारीकी से निगोशिएट करता है, खासकर साकर किए जाने पर कॉम्पेंसेशन को लेकर। न्यूकासल यूनाइटेड का एंटोनी गोर्डन बायर्न म्यूनिक में जाने के लिए राजी हो गया। अब दो क्लबों के बीच निगोशिएशंस हो रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट के इंटरनेशनल मिडफील्डर एलियट एंडरसन के लिए फॉर्मल मूव करने के लिए तैयार हैं। इधर माइकल कारिक को परमानेंट बॉस बनाने के लिए जो उसे करना था वैसे उसने तो कर दिया। अब क्लब के सीनियर अधिकारी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उसको स्थायी परमानेंट मैनेजर बनाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं मालिक जिम रैटक्लिफ से। टेनिस में इटालियन ओपन में इगा श्वातेक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। कल आसानी से श्वातेक ने पेगुला को 6-1 6-2 से रफा दफा किया। वितोलिना ने रिबाकीना को हराया। लड़कों में कास्पर रूड सेमीफाइनल में गया काशानोव को हराकर। स्पेन का युवा खिलाड़ी जोदा हार गया इस बार दादेरी के खिलाफ। आज सीनर रूबलेव ये क्वार्टर फाइनल है। सीएसटीआ गोफ ये सेमीफाइनल। लंदालुस मेडवेदेव क्वार्टर फाइनल और श्वातेक वितोलिना सेमीफाइनल। क्रिकेट विराट कोहली की ओर से सेंचुरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। 60 बॉल 105 नॉट आउट विंटेज एफर्ट। पिछले दो मैचों में कोहली डक आउट हुआ था 0 पर आउट, पर इस बार 0 के अगल बगल में 1 और 5 मतलब 105 नॉट आउट। कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पोररी लेकिन क्लास इज परमानेंट, ऐसा कोहली के लिए लागू हुआ। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 16 अंक के साथ अभी आगे है। गुजरात टाइटंस के पास भी 16 अंक हैं 12 मैचों के बाद। फिर सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 13 अंक हैं उनके पास, चेन्नई सुपर किंग्स 12, राजस्थान रॉयल्स 12। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अंत में एथलेटिक्स के अफ्रीकन चैंपियनशिप में नोआ बीबी 100 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। अखरा गाना में सेमीफाइनल में नोआ बीबी 8वें स्थान पे आया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। फिर से बता दें, आपको याद दिला दें, क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराकर मैनचेस्टर सिटी ने ऐलान किया है कि आर्सेनल को इतनी आसानी से टाइटल जीतने नहीं देंगे, लड़ेंगे अंत तक, मरते दम तक। Don't forget, World Cup, Road to World Cup जारी है RM2 पर और आज ग्रुप प्रेजेंटेशन को जारी रखेंगे। Have a wonderful time listening, Radio Musti, take care, bye bye, good day ahead.
1: ऐसे कैसे आपको जाने देंगे अरविंद, आपने कहा ना कि लड़ते रहेंगे, आखिरी जोश लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो हम आपको कहेंगे कि चाय वाय पी के जाएगा, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा बता देंगे।

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में सह मेजबान को होस्ट कनाडा के साथ स्विट्जरलैंड, कतर और बोस्निया हेर्जेगोविना है. कनाडा तीसरी बार के लिए वर्ल्ड कप में है. मेक्सिको 1986 में केवल ग्रुप स्टेज, कतर 2022 में भी ग्रुप स्टेज से एग्जिट. की प्लेयर्स अल्फोंसो डेविस जो बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी हैं, जोनाथन डेविड जो यूवेंटुस में खेलता है और इस्माइल कोनी जो मार्सेई का खिलाड़ी हैं. स्विट्जरलैंड के लिए 13th वर्ल्ड कप अपीयरेंस. यूईएफए क्वालिफाइंग ग्रुप से अनडिफीटेड कोच मुरत यकीन को यकीन है कि द नाती बहुत आगे जाएंगे. तीन बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी ये टीम. ग्रानिट जाका, मैनुअल अकांजी, गोलकीपर ग्रेगो कोबे की प्लेयर्स हैं इस टीम में. कतर के लिए दूसरा वर्ल्ड कप, कोच हैं जूलियन लोपेटेगी. दो बार एशियन चैंपियन, की प्लेयर अकरम अफीफ, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर. बोस्निया हर्जेगोविना के लिए दूसरा फीफा वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन. प्ले ऑफ से क्वालिफाई हुई हैं द ड्रैगन्स. अपने 26 खिलाड़ियों के नाम दे चुके हैं. एडिन जेको 40 साल का अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है. सो ग्रुप बी में कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना के लिए तो अब इसमें स्विट्जरलैंड क्वालिफाई होने के लिए फेवरेट हैं. पर फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, ये सभी लोग जानते हैं. सो दैट वाज ग्रुप बी इन वर्ल्ड कप 2026.
3: थैंक यू सो मच अरविंद.
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई. कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

नमस्ते, डॉक्टर नवीन रामगुलाम और विलियम रूटो के बीच मुलाकात संगे मॉरिशस और केन्या के संबंध और भी मजबूत होलबा अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो संगे एगो महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक लगेलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार यात्रा खाली औपचारिकता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध के गहराई के दर्शावेला जिकरा ओ एगो नवा स्तर तक ले जाए चाहत हमन। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो मॉरिशस के नेतृत्व के सराहना करलन। वो अफ्रीका फॉरवर्ड सम्मेलन के सफलता में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के योगदान के खुलकर प्रशंसा करलन। औपचारिक बातचीत के आगे बढ़ा के दोनों नेता महाद्वीप के सामने मौजूद प्रमुख चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता तक पहुंच पर साझा रणनीति बनाए के नींव रखन जा। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्ष के संयुक्त घोषणा संगे होल जेकर में ऊर्जा डिजिटल विकास रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर देवल गल। मॉरिशस के लक्ष्य इलाका के सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करे के है। 4 और 9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ल कई गो परियोजना के रूपरेखा तैयार करल गल। ये पहल के मकसद एगो कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करे के है। इकर खातिर यूरोपीय संघ और विश्व बैंक के सहयोग लेवल जाए साथ ही सेशल्स कृषि खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग के और भी मजबूत करे के योजना बाती। काजिनो एम्प्लॉयज यूनियन इबलेबा के मॉरिशस के काजिनो के निजीकरण को समाधान नहीं है। यूनियन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संघ एगो बैठक के मांग कर लेबा। क्यूपी में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन बुल्लक के गल 5 बरिस में मॉरिशस के काजिनो सरकार के खजाना में लगभग 1.3 बिलियन रुपया टैक्स के रूप में जमा कर ले बाते। यूनियन के प्रवक्ता शर्विन सनासी बुल्लन की ये आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा संसद में देवल गल बयान से अलग है। प्रधानमंत्री सांसद कवि राजे रुकनी के एगो संसदीय प्रश्न के जवाब में बोले रहलन कि 2015 से 2025 के बीच काजिनो मॉरिशस के कुल 1.9 बिलियन रुपया के नुकसान होबा। शर्विन सनासी ये भी बोलन कि काजिनो मॉरिशस में लगभग 500 कर्मचारी बाते और हो जा कर्मचारी के अधिकता नहीं बा। हालांकि वो कंपनी के प्रबंधन में कयन गो खामी की ओर ध्यान भी आकर्षित करलन। गौरतलब है कि काजिनो मॉरिशस के पास इस समय 3 गो काजिनो बाते क्यूपेप गांव बे और कोडो में। हालांकि कोडों स्थित काजिनो फिलहाल संचालन में नहीं बाती। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन रविवार 10 मई के पेचित रिविया में होल घटना के बाद एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेलग। एगो गंभीर सड़क दुर्घटना में एगो मोटरसाइकिल चालक की मौका पर ही मौत हो गया रहल। यूनियन जनता के कुछ लोगन द्वारा चिकित्सा कर्मी और आपातकालीन टीम के प्रति

0: बरहल आक्रामकता पर चिंता जतैलक। डॉक्टर के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराई धमकाई की घटना उलोक के बचाव और उपचार कार्य के लगातार जस्ती कठिन बनावट बाती। इंडनचन लिबरूट कॉन्फ्रेंस पर आधारित एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित करल जाबा। इस सम्मेलन इंडनचन लिबरूट प्रोजेक्ट के एगो प्रमुख पहल से जुड़ल है जेकर सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। इस परियोजना के मकसद दुनिया भर के गिरमिटिया मजदूर से संबंधित एगो विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करे के है। इस पहल के तहत सुरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाड एंड टोबेगो सहित विभिन्न भारतीय मूल के प्रवासी समुदाय के अभिलेख एकत्र करल जाए। इस दस्तावेज के ऑनलाइन उपलब्ध करावल जाए जिमें शोधकर्ता अपन पूर्वज के जड़ के खोज करे होला लोग एकर लाभ उठाए सकें जा। इंडन चडलीबरूट प्रोजेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति के अध्यक्षा फरजना गाउंडर बुल्डन की परियोजना के एगो और उद्देश्य गिरमिटिया इतिहास से जुड़ल पैतृक गांव के नक्शा तैयार करे के है। उनका अनुसार ये कार्य जटिल जरूर है बके साझा इतिहास और सामूहिक स्मृति के पुनर्जीवित करे खातिर ये बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश में शी जिनपिंग बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगे महत्वपूर्ण वार्ता से अक्टे बुलन कि चीन और अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हो के चाहे। शी जिनपिंग बुलन कि दोनों देशन के सहयोग से लाभ हो और टकराव से नुकसान। एक जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग के महान नेता बतैलन और बुलन कि दोनों महाशक्ति के बीच संबंध अक्टे से भी बेहतर हो। वो इस शिखर वार्ता के बेहद महत्वपूर्ण बतैलन। बीजिंग में हो रहल इस बैठक में व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान प्रतिबंध और ईरान से जुड़ल मुद्दा पर चर्चा हो के उम्मीद बाते। कईन गो बड़ा अमेरिकी उद्योगपति और टेक कंपनी के प्रमुख भी इस दौरा में शामिल होवन जा जेकर से बैठक के आर्थिक महत्व भी बढ़ गल बा। और तलब के काल चीन पहुँचल ट्रंप के बीजिंग में रेड कार्पेट और ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एगो राजकीय भोज संगे भव्य स्वागत करल गल। 2017 के बाद से लगभग एक दशक में कोनो अमेरिकी राष्ट्रपति के ई पहला चीन यात्रा है। और ये दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एगो क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामला सामने आयला के बाद करीब 1700 यात्री के जहाज पर ही रोक देवल गल। अधिकारी के मुताबिक कईन गो यात्री में गास्ट्रो एंटेराइटिस जैसे लक्षण पाल गल बा। इकरे संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 8:11 हुए हैं, थर्सडे 14th of May। हेलो जी, कैसे हो आप? और सब चल रहा है बढ़िया? अभी तो आप आधे रास्ते तक पहुंच भी गए होंगे काम पर, जो पहुंचना है आपको। चलिए, स्ट्रेस लेने का नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे 9 बजे तक। और अभी के लिए समय हो गया है ये भी जान लें हम कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
4: On est tous winners.
5: हमारे इलाके पर कुछ तेज़ हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए हो सकते हैं। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:31 पर, सूर्यास्त होगा 5:41 पर।
6: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Le gel douche 500 ml Hugva à 79,95 € et 5 kg de riz basmati Mahal 11-21 à 289,95 €. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
7: On est tous winners.
0: RM2
2: Radio Musti.
8: Quand les petits bébés, Moticone Prothèse Li compte tout kitsos. Mais Astella donne les mondes digital, mot pas toujours connu au kisan la lipécosé ou soit qui lipégueté. Heureusement, mon recherche télécom et Nam IT Protect, une solution pour protéger.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी पे निर्भर होते हैं। हमें चाहिए कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में जो हमेशा हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे। कभी कभी हम कहते हैं कि खून के रिश्तों से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन ये सही नहीं होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, जिन्हें हमने हो सकता है एक साल पहले जाना हो, जिसे हमने शायद एक महीने पहले जाना हो, या हो सकता है हमने एक दिन पहले जाना हो, या अभी अभी किसी से मिलकर ऐसा लगता है कि इस इंसान को हम तो बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कनेक्शन बहुत गहरा हो गया, और ये भी लगता है कि जैसे ये जो साथ है ना, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एक भाई बहन का हो, चाहे वो दो बहनों या दो भाइयों के बीच में हो, यानी कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसको हम कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कभी कभी दोस्ती का भी रिश्ता ऐसा हो जाता है, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी आपके साथ निभाए। और सिंसरिटी वही है जहां पर इंसान बिना मतलब के भी अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाए। तो बस आपके लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त मिले आपको जो हमेशा आपके साथ हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल समय हो, आपका साथ ना छोड़े। और एक साथ तो हम ये भी हैं कि रेडियो मस्ती का साथ हमेशा आपके साथ होता है, हम हमेशा आपके साथ हैं। डोंट फॉरगेट 549 1294 अगर दिल कुछ कहना चाहता है।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि भाई सर में दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि समय हो गया है कि आप अपने बॉडी को थोड़ा ध्यान से देखें और फिर उसके बाद आप देखें कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। सर में दर्द होना, गले में खराश होना, नोज़ ब्लॉक होना, आपको पता है कि विंटर जो है वो कदम रख चुका है और ऐसे में जब मौसम बदलता है तो काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो जब आपके गले में खराश हो रही है तो वेट मत करें कि आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाए तब आप डॉक्टर के पास जाएं। इसका जो घरेलू उपाय हैं वो कर सकते हैं और डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसा आप कर सकते हैं, नमक पानी के साथ गागल करो। जी हाँ, थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसके साथ आप गागल कीजिए। जी हाँ, जितने भी यहाँ पर हमारे गर्दन में जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो ये क्या करता है, ये अंदर जाए इससे पहले आप उसको नमक पानी के साथ निकाल दो बाहर। इसका मतलब ये है कि रोज़ मॉर्निंग में अगर हो सके तो 3 बार आप मॉर्निंग में, और दिन में अगर नहीं हो रहा है दिन में तो कोई बात नहीं, आप रात को सोने से पहले गागल नमक पानी के साथ ज़रूर करें, अपने गले को साफ करें इससे पहले कि ये और ख़तरा बढ़ जाए। और जब आपको पता ही है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या आपको पता है कि आपको विंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो लगती हैं कि आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम होने लगते हैं, तो प्लीज़ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं और जितने जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को दिखाएं।
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: जी आंख मारने से क्या होगा, थोड़ा हाथ पैर मारो फिर देखो बॉडी कैसे बनती है। पता है हमारी जो बॉडी होती है ना, हमेशा हमें सिग्नल्स देती है, बस हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। थकान हो, हेडेक हो, लो एनर्जी हो, पो स्लीप हो या मूड स्विंग्स हो, अक्सर बॉडी का एक तरीका होता है कि कहता है कि अरे भाई अब तो थोड़ा रेस्ट दे दो, थोड़ा सा केयर कर लो, अरे भाई मैं अब अपने उस मुकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर मैं अब तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ। देखो सिंपल साइंस होती है हमारी बॉडी जो हमको देती है, जब बहुत ज़्यादा थकान होती है तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट या न्यूट्रिशन चाहिए। अब अगर आपको दिखता है कि बार बार आपको हेडेक्स आ रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, या तो फिर हो सकता है कि आप अच्छे से सोते नहीं हैं, ठीक है। और जब अच्छे से नहीं सोते हो तो ये भी होता है कि ये मेंटल स्ट्रेस या हो सकता है कि आपके जो अनहेल्दी रूटीन है उसका साइन हो सकता है। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लो हो गई, आप कुछ नहीं होगा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दो, बैठ जाते हो कोने में सर पकड़ के, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है या आपको विटामिन की ज़रूरत है। कभी कभी इस वजह से भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि डॉक्टर देख लो कौन सी विटामिन की कमी है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि भूल जाते हैं कि मैं साल में कम से कम एक बार तो पूरी बॉडी के चेकअप करवा लो, खून चेकअप करवा लो, उसका पूरी खून जांच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विटामिन की कमी है, किसकी कमी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होता है, तो ये होता है जब काम में बहुत ज़्यादा काम होता है, यू नो इमोशनल स्ट्रेस का सिग्नल होता है ये। और जब आपकी बॉडी हमेशा आपको दर्द देती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं, अभी भी ठीक से बैठे नहीं हो, कुर्सी के एच पे बैठे हो ना, ठीक से बैठो, बैक को जो है ना रिलैक्स करो। जब बहुत आपको फटीग होता है, बहुत एक्सरसाइज की कमी होती है, तब बॉडी पेन करता है। लो एनर्जी होती है तो आपको पता है कि आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा पानी पियो, आप थोड़ा अच्छे से सो लो, जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना खाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को अंदर मत रखो। बात करनी है बात करो, ख़त्म करो। हेल्दी बॉडी तभी बनती है जब हम उसकी छोटी छोटी वार्निंग्स को समझते हैं, और शुरुआत आपको अभी से करनी होगी। Right now, पहले ठीक से बैठो।
0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: Morning beat. RM2.
2: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी मैं भी घड़ी घड़ी घड़ी ही देख रही हूँ और घड़ी कह रही है कि क्या बात है विदिता, अभी तो समय हो गया है सभी लोगों के लिए टाइम हो गया ना अभी ऑफिस के अंदर जाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 8:45 बजे ऑफिस के अंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल ही रहा होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम हेलो बोलना चाहेंगे हमारे तमाम दोस्तों के लिए, थैंक यू सो मच यलेश, साथ दिया आपने और हमारे गाने इन्जॉय कर रहे हैं, और यहीं पर कहीं बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अपने मैसेज भेजते हैं, एंड रूविन कुनाय को हैप्पी बर्थडे क्यूपिप रहते हैं, और साथ ही साथ हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आपको भी, आपने बहुत लंबा मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि आई विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू दीदी रीना फ्रॉम पापा सुनील, बेटा आरव, सानवी, अवनी, अवनीश, तीन भाइयों की तरफ से अक्षय, रितेश, ऋषि, पूजा पल्लवी, स्वीटी, बिसेसर फैमिली, और आप रहते हैं मौसमो आहवन कालिन और नलिनी, संजय मंगरू और काहोलिन, साथ में हैप्पी बर्थडे विश किया है और आपने गाना भी मांगा है, तो हम कोशिश करेंगे। तो दीदी रीना आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे पूरी फैमिली की तरफ से। चलिए यहाँ पर हमारे साथ हैं दयानंद श्याम, और उनको भी हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया, हमारे बाद आ रही हैं नीलमणी और विकास आपका साथ देने के लिए। गाइस आई होप यू रियली हैड अ गुड टाइम, और अभी के लिए मैं आपको छोड़े जा रही हूँ बहुत की धमाकेदार गाने के साथ। एंजॉय कीजिए, मस्त मूड में रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, सी यू।
3: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली, फील्स अ मस्ती, रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 9 बजे हैं

0: करुणा इस समय स्टूडियो में है, आइए इनसे समाचार सुनते हैं। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। अफ्रीका वॉच शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्षों की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर विराम गुलाम और केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। मॉरिशस का लक्ष्य इलाके का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। 4 से 9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इस पहल का मकसद एक कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। इसके लिए यूरोपीय संघ, विश्व बैंक का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही सेशेल्स, कृषि खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को भी मजबूत करने की योजना है। काजिनो एम्प्लॉयीज यूनियन का कहना है कि मॉरिशस के काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं है। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। क्यूपिप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस के काजिनो ने सरकार के खजाने में लगभग 1.3 बिलियन रुपये टैक्स के रूप में जमा किए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने रविवार 10 मई को पेचित रिविया में हुई घटनाओं के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत स्थल पर ही हो गई थी। यूनियन ने कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार अधिक कठिन बना रही हैं। और विदेशीय स्तर पर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता से पहले कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। इसके जवाब में ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता बताया और कहा कि दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होंगे। उन्होंने शिखर वार्ता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। बीजिंग में हो रही इस बैठक में व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान, प्रतिबंधों और ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
4: You're listening to Musty Mornings.
5: Musty Morning Show.
4: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Yes, good morning, Norwich, good morning, मैं हूँ चला है।
2: आज मेरे मन कर रहा है कि वो गाना गा दें, एक दो तीन,
0: क्योंकि
2: हाँ वो 14 तक रहता है इसलिए, right, 14th of May, hey guys, a very good morning, आप सभी को स्वागत है आप सभी का, right, आज है dance like a chicken day, right?
0: Really?
2: हाँ, वो हाथों को जैसे तुमने अपने विंग्स बना के टिकी टिकी टिकी टिकी डांस मार रहे हो।
0: हाँ,
2: तो अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं दोस्तों तो टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा मुर्गा डांस कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ट्रैफिक में अगर फंसे तो एंड यू नीड टू कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग, वो जो लेफ्ट में बैठे थे उनकी बात कर रहा हूँ।

0: चलिए बहुत बढ़िया। वैसे बेता फुल ऑन डांस मार रही है और यहाँ पर नितुषा भी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग टू यू। तुम्हारी टीम बिल्कुल सेट है। और जब आज की बात करते हैं तो और कौन से दिन है आज?
1: और भी दिन है, आज है ऑनलाइन रोमांस डे।
0: क्या बात कर रही हो? थर्सडे को थर्सडे होता है, और कौन सा डे होता है? और भी डे होते हैं। चलो ठीक है, ऑलराइट। सो बस तैयार है क्योंकि मॉर्निंग मस्ती और करने के लिए फुल ऑन राइट स्टाइल के अंदर म्यूजिक का हंगामा। द टीम्स राइट है, निर्मल विकास आपके साथ, जहां पर राशि होने वाली है, हाउस होल्ड ट्रैक क्रिएशन टिप्स भी होंगी और फैशन टिप्स भी होंगी। सो स्टे ट्यून्ड और बताइए कि आपके साइड पर मौसम कैसा है। थोड़ी बारिश बारिश हो रही है ना?
1: हाँ,
0: चलने दो, मौसम को बदलने दो, हम नहीं बदलेंगे।
1: एग्जैक्टली, तो यू फॉर स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स हैव सम फन टुगेदर।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: भाई आजकल ज़माने में ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग अपने AI असिस्टेंट के साथ बहुत ही प्राइवेट बातें करते हैं, सब कुछ बता देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, लेकिन जो चीज़ें होता ना कि तथ्य के साथ जुड़ी हैं, यानी कि आप अगर सोचते हैं कि ये चीज़ किसी बेसिस पर बेस्ड है, यानी कि सर्वे पे बेस्ड है, आपको पता लगा रहा है टेक्निकल या साइंटिफिक, वो ठीक है। लेकिन जब आप इमोशंस की बात करते हैं तो AI कितना सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी कई लोगों को आराम मिलता है। अब सुनने में आ रहा है कि AI के साथ सीक्रेट बातें, व्हाट्सएप में आएगा एक इनकॉग्निटो फीचर, यानी कि आप अब AI के साथ बिल्कुल प्राइवेट बात कर सकते हैं और ये जो बातें हैं ये व्हाट्सएप भी नहीं सुन पाएगा, सेव नहीं कर पाएगा। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आपके और AI बॉट के बीच में ही हो रही हैं।
3: ये तो कमाल की बात है।
2: नहीं, कमाल की बात है, लेकिन आप फाइनली रियलाइज करते हैं कि आप एक मशीन से बात कर रहे हैं, एक सिस्टम से बात कर रहे हैं, वो इमोशंस को क्या समझेगा। एक इमोशन की कीमत तुम क्या जानो AI बाबू। चलिए नीलमणि, बस थोड़ी देर में हम राशियों के बारे में बात करने वाले हैं। सितारे कितने चमक रहे हैं इस बादल के पीछे, जो अभी बरस रहा है, कुछ सुनने के लिए तरस रहा है, तो सुनाते हैं, गाना बजाते हैं।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: यस, वक्त हो चला है जानने के लिए कि आज के स्टार्स आपके लिए क्या प्लान करके बैठे हैं, कौन सा कलर लाएगा लक और कौन सा नंबर करेगा आपके दिन को सुपर स्पेशल। चलिए जानते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज एनर्जी आपकी मस्त रहेगी। जिस काम में देरी हो रही थी उसमें आपको तरक्की मिलने वाली है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज थोड़ा सा सेल्फ केयर और पीस पर फोकस कीजिए। फाइनेंशियली गुड न्यूज मिल सकती है। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आज आप उनसे सबको इंप्रेस करने वाले हैं। नए कनेक्शंस भी बेनिफिशियल रहेंगे। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: इमोशनल बैलेंस को आपको मेंटेन करना है। फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करके मूड बेहतर हो सकता है। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: ऑर्गेनाइज रहना आज आपको एडवांटेज देगा। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। लकी कलर आपका है बेज और नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: प्यार और दोस्ती दोनों स्ट्रांग रहेंगे। पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर पाओगे आप। लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग रहने वाली है। किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में भी आपको दिल की सुनना है। लकी कलर है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: एडवेंचर और एक्साइटमेंट का मूड रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज नॉक नॉक कर रही है। लकी कलर है पर्पल और नंबर आपका है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: हर वर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। पेशेंस आपको मेंटेन करना है। लकी कलर है ग्रे और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: क्रिएटिव आइडियाज आज शाइन करेंगे। दोस्तों के साथ फन मोमेंट्स मिलेंगे। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: यस, हमारे पाइसेस बडीज आज पॉजिटिविटी और कॉमनेस आपकी स्ट्रेंथ होगी। ओवर थिंकिंग को आपको अवॉइड करना है। लकी कलर है समुद्री हरा और नंबर है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got. You're listening to Musti Mornings. Musti Morning Show. Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा नन्वन, एक क्वेश्चन तुम्हारे से। एक टैक्सी वाला नो एंट्री में घुस रहा था, पुलिस वाला सामने था लेकिन रोका नहीं। क्यों?
3: किसने नहीं रोका?
2: पुलिस वाले ने नहीं रोका उसको। एक टैक्सी वाला नो एंट्री में घुस रहा था लेकिन पुलिस वाले ने उसको देख लिया लेकिन फिर भी नहीं रोका। क्यों?
3: क्यों?
2: क्योंकि वो पैदल चल रहा था, टैक्सी वाला था लेकिन जरूर थोड़ी टैक्सी में था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नो एंट्री। राइट, 2005 में आई थी फिल्म नो एंट्री। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसकी सीक्वल आने वाली है कि नो एंट्री में एंट्री।
3: हाँ, नो एंट्री में लाइक एंट्री बोल रहे हैं कि होने वाला था मूवी लेकिन अनसर्टेनिटी रिपोर्ट हो गई है क्योंकि वरुण धवन बैक्ड ऑफ।
2: सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो बड़े साज है इससे बाहर निकल रहे हैं। पता नहीं क्यों, पहले सलमान खान ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, उसके बाद बाहर भी हो गए थे, आ भी गए थे, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अर्जुन कपूर, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी लीड रोल के लिए फाइनल किए गए लेकिन एंड में काफ़ी बदलाव हो गए। बहुत सारे चेंजेस, आई डोंट नो व्हाट्स रियली हैपनिंग, लेकिन नो एंट्री में एंट्री कौन करना चाहेगा?
3: और लोगों ने ये भी कहा था कि शाहिद कपूर है मूवी में होने वाला है लेकिन वो फॉल्स और बेसलेस है क्योंकि शाहिद कपूर तो इसमें था ही नहीं।
2: वैसे वरुण, दिलजीत दोसांझ ये पिछले साल फिल्म छोड़ने के बाद, सीक्वल से बाहर होने के बाद कुछ और लोगों को अप्रोच किया गया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि कौन इसमें फाइनली होने वाला है। अब अगर बात करें हम बोनी कपूर, तो वो भी एंट्री मार चुके थे, उन्होंने कहा था कि वरुण और अर्जुन फिल्म का हिस्सा बनेंगे लेकिन फिर से थोड़े से चेंजेस, आई डोंट नो। लेकिन वरुण की बात करें तो कमाल की शुरुआत रही जिसमें दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी और सनी देओल बॉर्डर टू, इसके साथ सफलता मिली। अब मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ आने वाले हैं ए जवानी तो इश्क होना है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन नो एंट्री में एंट्री, इसमें फनी मोमेंट्स होने वाले हैं लेकिन कौन कर पाएगा इस शिद्दत के साथ काम, पता नहीं। चलिए हम तो एंट्री मारते हैं म्यूजिक वर्ल्ड में।
1: RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: Just love me.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Welcome to RM2.
2: Musti Mornings, Radio Musti.
6: आज का सीन कुछ ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे हो और आपको टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना हो तो कहते हैं चलो फोन खोल लिया,
7: फोन चला
6: और
7: लेते हैं।
6: पता नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया। नहीं
7: सच में
6: तो सोचो कोई ऐसी फीचर हो जो आपको बताए, आपको रोके और कहे कि ए, ये जरूरी है, ये क्या हुआ। चलिए बात करते हैं गूगल पॉज पॉइंट फीचर। अगर आप भी सिर्फ कुछ देर के लिए फोन उठाते हैं लेकिन सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते करते कब घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, तो गूगल आपके लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है जो आप खोलने से पहले यूजर को समय देगा और डिजिटल लत से बताएगा। डिजिटल लत कि भाई ये रील्स देखोगे कब तक, ये कहानी है। अब आप बता दें आपको एंड्रॉयड डूम स्क्रोलिंग फीचर। आज के समय में ज़्यादातर लोग मोबाइल पर घंटों रील शॉर्ट्स और वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। कई बार यूज़र मूड फ्रेश करने के लिए कुछ मिनटों के लिए आप खोलते हैं लेकिन घंटे निकल जाते हैं। अब करें तो क्या करें। अब देखिए साहब ये पॉज पॉइंट आ गया है। अब आपको बता दें इसके बारे में, एक्चुअली जो पॉज पॉइंट फीचर है ऐसा फीचर है जो किसी चुने गए ऐप को खोलते ही यूज़र को लगभग 10 सेकेंड का ब्रेक देता है और इस 10 सेकेंड में यूज़र सोच सकता है कि ऐप खोलना सच में ज़रूरी है या फिर समझ सकता है कि सिर्फ अपनी आदत से मजबूर है और फिर आप एक डिसीजन ले सकते हैं। एक डूम स्क्रोलिंग ऐप है। आपको बताएं गूगल के अनुसार ये फीचर सिर्फ रुकने का मौका नहीं देगा बल्कि पॉज के दौरान यूज़र को सलाह देगा कि आप दूसरे ज़रूरी काम भी निपटा सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइम लिमिट सेट करने की सुविधा भी होगी।
7: ये काफ़ी इंटरेस्टिंग।
6: हाँ जैसे लोग लगाते ना कि छोटा सा एक रिमाइंडर डाले या एक
7: पानी पी लो, ये
6: हाँ
7: कर लो,
6: वो सब के लिए। लेकिन जब आप उस ऐप को यूज़ करें क्योंकि पता नहीं ना कब आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम ही आपको एक छोटा सा फीचर आएगा कि रुक जाओ थोड़ा सोचो और फिर डिसाइड करो आगे बढ़ना है रुकना है कुछ और करना है। गिव इट अ थॉट।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
6: जय मुझे रील्स देखने की लत लग गई है। जय हाँ इसमें हो सकता है कि बसंती हो। बसंती इस म्यूजिक पर मत नाचना बसंती।

0: चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर अब्राहम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को ये दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इंडेंचर्ड लेबरहुड कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में लगाया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडेंचर्ड लेबरहुड प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है, जिसका सचिवालय मॉरिशस में है। इस परियोजना का मकसद दुनिया के गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। विदेश में 2 महीने से खाड़ी में फंसा चीन का एक विशाल तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से निकल गया है। ये टैंकर 20 लाख बैरल इराकी कच्चे तेल के साथ फंसा हुआ था और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामले सामने आने के बाद करीब 1700 यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक कई यात्रियों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रामावतार लेन इजिडो रोज में 40 साल के 40-year-old श्री याविश शर्मा रामावतार, श्री याविश शर्मा रामावतार जो याविश से जाने जाते थे और पहले एमबीसी के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी माँ श्रीमती मित्रा ने रामावतार के मकान रामावतार लेन इजिडो रोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए इजिडो रोज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रूट रॉयल कैथेड्रल में 69 साल के 69-year-old श्री गौकरण जांगी, श्री गौकरण जांगी जो माऊ से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान रूट रॉयल कैथेड्रल से उठाकर दाह संस्कार के लिए डिफ्रेया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
4: You're listening to Musty Mornings.
5: Musty Morning Show.
4: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: Good morning, morning, morning. में हम आ गए हैं बाबस निर्मनी और विकास आपके लिए
2: 10:08 Yes, शुरुआत हुई नितुषा उसका वेदता और यहाँ पर अभी निर्मनी और विकास दोनों के दोनों हैं आपके बहुत ही करीब बहुत ही पास और चाहते हैं कि आप भी रेडियो के साथ यूं ही हमेशा साथ देते रहें। चलिए बी टाउन की खबरें हो या फिर होम डेको या फिर कुछ हाउस होल्ड टिप्स हो लेकिन जरूरी है कंपनी। कभी लगता है जैसे घर पर आप हैं और एक रेडियो ऑन है तो मजा आता है, बातें चल रही हैं, एक मूड माहौल सेट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इंसान कोई भी अकेला नहीं चलना चाहता, उसके साथ एक हम सफर हो तो सफर काफी आसानी से कट जाता है।
0: और म्यूजिक साथ में हो तो
2: क्या बात है, संगीत ही संगीत, तभी तो है हर किसी के मन का मीत, ना इसमें हार ना कोई जीत, तभी तो लगा रखी आपने इतनी सारी प्रीत।
0: क्या बात।
2: आगे चलते हैं, मौसम साथ में वाइब सब कुछ बदलते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट वन।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: अरे वाह,

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए तो सच है कि जहां पर गर्मी जा रही है वहीं पर विंटर पास आ रही है और ऐसे में अपने आप को वार्म रखना, कंफर्टेबल रखना बहुत जरूरी है।
3: ऊपर से आप आजकल मॉरिशस में बहुत ज्यादा ठंड होने लगी है।
2: क्या बात कर रहे हो, इतनी नहीं, नहीं ठीक ठीक है, आई मीन इट्स थोड़ी
3: नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगहों पर वी आर लाइक फ्रीजिंग।
2: पता नहीं कहाँ पर है, बट एनीवेज तुम मॉरिशस में रहती हो ना?
3: हाँ।
2: अच्छा ठीक है, राइट। वैसे अब वक्त आ गया कि अपने जो वार्डरोब के विंटर हीरोज हैं उनको बाहर निकालें, क्योंकि अब वो एक्शन में आ चुके हैं।
3: Exactly.
2: अब देखिए, हमने जैसे कहा कि थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई, तो आप लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिए और स्वेटर्स जैकेट्स को डायरेक्ट पहनने मत लग जाइए, क्योंकि उनको सनशाइन दिखानी है, बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो अलमीरा का जो परफ्यूम होता है वो आना शुरू हो जाता है, इट्स नॉट अ गुड फील। और वहीं पर जहाँ पर जो डैम्प प्लेसेस हैं वहाँ पर यू विल स्मेल लिटिल फंगस आल्सो। इसे जरूरी है कि उनको सनशाइन जरूर दिखाएं, और साथ साथ में अगर आप कुछ फैब्रिक सॉफ्टनर्स या जिसका इस्तेमाल करते हैं धो रहे हैं उनको, तो ये भी बहुत जरूरी है कि उनको आराम से टाइम दीजिए सूखने के लिए, नहीं तो वो स्मेल बिल्कुल जाती नहीं है। बहुत जरूरी है थोड़ा फैब्रिक फ्रेशनर हो, थोड़ी सनशाइन की थेरेपी हो, दोनों बहुत कमाल करने वाली है। और विंटर के लिए आप बिल्कुल सेट हैं, जैसे कहा। और क्या चाहिए? अरे चाहिए आपको वो वार्म स्माइल भी जो कपड़े पहने के बाद अपने चेहरे पर रखेंगे। कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक 24/7।
1: RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, it's 10:26 and now it's time for कुछ घर के डेकोर के लिए टिप्स.
3: नहीं नहीं डेकोर नहीं, ऐसा है कि हम उन लेडीज की बात कर रहे हैं जो घर पर हैं और वो अभी किचन में काफी एनिमेटेड हैं. म्यूजिक चल रहा है और एक के बाद एक पैन पे पैन बदल रहा है. अच्छी बात है. अच्छा, गुड मॉर्निंग आप सभी को, घर की क्वींस. बस अगर आपके मसाले जल्दी अपनी खुशबू खो जाते हैं तो फिर आपको एक छोटा सा फिल्मी ट्विस्ट उनको देना होगा. एक्चुअली उनको गैस के पास मत रखिए, वो जो हीट है ना वो किल्स इट. इसे ज़रूरी उसको थोड़ा दूर रखें, ठंडी कूल जगह रखें और अगर कोशिश करेंगे तो उसमें लौंग डाल दें. सो अपनी फ्रेशनेस मेंटेन रखेंगे और बिल्कुल बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग्स की तरह हमेशा महक देते रहेंगे. ओए होए कमाल हो गया ना. और वहीं पर फ्रिज की बात करें तो काफ़ी चीज़ें अभी तो ठंड में होता है कि बाहर भी कुछ चीज़ रह गई तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी फ्रिज खोलते ही अगर अजीब सी विलन टाइप की आपको स्मेल आ रही तो क्या करें. छोटे बोल में आप एक बेकिंग सोडा या कॉफी पाउडर रख दीजिए फ्रिज के अंदर. बैड स्मेल को बोलेगा पिक्चर खत्म और एक बार फिर से आपका आ जाएगा दम, यानी कि आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे. डेट चेक करते रहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिनकी एक्सपायरी लेकिन फ्रिज में तो पड़ी हुई है. कब तक चलेंगी, बस एक राउंड मारो उसकी नजर उतारो और लग जाओ काम पे.
1: Radio Musty feels a musty.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: आज वेदर थोड़ा कूल है लेकिन नॉट टू फ्रीजिंग, टू ट्राई कीजिए लाइट लेयरिंग को, हैवी जैकेट को स्किप कर दीजिए, सिंपल टी शर्ट डेनिम जैकेट के साथ वो होता है एफर्टलेस शीक। स्नीकर्स भी परफेक्ट है थर्सडे वाइब के लिए, कंफर्टेबल भी है, ट्रेंडी भी है, वाइट स्नीकर्स लिटरली गो विद एवरीथिंग। एंड कपड़ों के कलर की बात करें, यू कैन ट्राई न्यूट्रल वंस जैसे कि बेज, वाइट, क्रीम। ओवरसाइज शर्ट्स विद जीन्स भी ट्रेंडिंग है और परफेक्ट है उस कैजुअल लुक के लिए। लेडीज़ के लिए मिनिमम मेकअप, टिंटेड लिप बॉल्म और थोड़ा सा परफ्यूम आपको मिलता है। क्लीन क्लासी वाइब्स एंड एक्सेसरीज को भी सिंपल रखिए, सिंपल स्टाइलिश वॉच या फिर स्मॉल हुप्स आपके होल आउटफिट को एलिवेट कर सकती हैं इंस्टेंटली। एंड फैशन टिप ऑफ द डे, आप ड्रेस कीजिए कंफर्टेबली इनफ टू सर्वाइव द डे लेकिन स्टाइलिश इनफ टू टर्न हेड्स।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एक्चुअली बड़ा मज़ा आता है जब हम बात करते कुछ घर की बातों को आगे बढ़ा रहे थे एंड गिविंग सम डिटेलिंग टू इट. किचन में बहुत कुछ होता है, खाना पीना बनता ही है. स्टोरेज से लेकर पकाने से लेकर यूटेंसिल्स को साफ करना, ओ काफ़ी बातें होती हैं. नहीं
3: बहुत काम है.
2: मैंने सुना तुम हमेशा अपने अंडे जला देती हो.
3: हाँ ये सच्ची बात है बॉस, मेरे में पेशेंस नहीं है ना.
2: क्या कर रही
3: है, जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पर डाल देती
2: हूं. नो रॉन्ग. वैसे कभी कभी होता है प्रेशर कुकर या फिर पतीला जल गया होता है अंदर से, है ना. तो उसमें घबराइए मत, आपको बस उसमें थोड़ा पानी और बेकिंग सोडा डालकर बॉयल करना है, फिर हल्का सा स्क्रब कीजिए और यूटेंसिल फिर से हीरो बन जाए.
3: चकाचक.
2: हर चीज को जोर से घिसने की जरूरत नहीं होती. कभी कभी पेशेंस भी काम आ जाता है, बहुत जरूरी है. और वहीं पर एक और टिप्स एंड ट्रिक व्हेन इट कम्स टू राइस स्टोरेज. हाँ, कभी कभी होता है उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े आ जाते हैं, तो उसमें क्या करें, चावल के डब्बे में 3-4 बे लीव्स, तुम्हें पता है बे लीव्स, वो थोड़े बड़े वाले, काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है.
3: हाँ तो बस,
2: हाँ तो ग्रीन कलर के. हाँ हाँ एग्जैक्टली, सही पकड़ा है. सिंपल घर का नुस्खा है, फुल सुपरस्टार रिजल्ट मिलने वाला है. उनको डाल दीजिए और कीड़े बे लीव को देख कर कहेंगे हट बे, गाना चला दे.
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti
1: Hit music only
2: Radio Musti feels a musti

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: ऐसे ही सेकेंड आवर हो गया था और मिलते हैं कुछ ही देर में संक्षिप्त समाचार के साथ। अभी के लिए लेट्स एंजॉय द म्यूजिक RM2 रेडियो मस्ती पर ही।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे हैं। जय सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फौज शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती हैं, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। काजिनो एम्प्लॉयीज़ यूनियन का कहना है कि मॉरिशस में काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ

0: लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार ज़्यादा कठिन बना रही हैं। विदेशीय स्तर पर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता से पहले कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। इसके जवाब में ट्रंप ने शी जिनपिंग को महानेता बताया और कहा कि दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होंगे और उन्होंने शिखर वार्ता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन पर चीन ने मानवाधिकार आलोचना के कारण प्रतिबंध लगाया था, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चीन पहुंचे हैं और दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत से डराने वाला अमेरिका अब खुद भारी संकट में फंसता दिख रहा है। पहली बार अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रासोइलेन वैपियरो डे ट्रियोले में 66 साल के 66-year-old जनाब अबूबकर नियामत, जनाब अबूबकर नियामत जो आशिक से जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रासोइलेन वैपियरो डे ट्रियोले से निकाल कर दफनाने के लिए प्लेंडे पपाए का कब्रिस्तान जा जाएगा। फ्यूनरल टू डेथ 2:30 PM। रॉयल रोड पेलग्रें सिबास्तोपोल में 50 साल की 50-year-old श्री रामजीत जुगोरू जो जॉन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेलग्रें सिबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए पेलग्रें की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:00 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Very good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking, safely landing into the third hour. स्वागत आप सभी का. उड़ते फिरते पहुंच गए बी टाउन की दुनिया में. निर्मनी, तुमने कुछ कहा अबाउट मनी?
3: मनी नहीं, इमरान हाशमी.
2: नहीं, तुम ये कहते कि टाइम इज मनी. अच्छा अच्छा, ओके ओके. हाँ, देखिए टाइम की बात करते करते पहुंच गए तीसरे घंटे में. अच्छा, क्या तुम गॉसिप्स निकाल के आए?
3: हाँ, बहुत सारे गॉसिप्स हैं जो आपको बाद में बोलेंगी, अभी के लिए अच्छा को एंजॉय करेंगे.
2: हाँ, ये भी ठीक है. तीसरा घंटा जहाँ पर बड़ा मजा आया. सेकेंड आवर में हमने कुछ हाउस होल्ड टिप्स, अपनी बातें की कैसे खाना पका दे कभी हीट पर जल जाता है पैन. हाँ, इसलिए हम ये जो बॉलीवुड की गर्मी है ना, उसको थोड़ा मीडियम आँच पे रखते हैं कि सब कुछ पक पक कर आए और उसके बाद बने गर्मा गर्म खबरें. All fresh and good. It's 9:11 in the morning.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: करते दिल की फीलिंग्स।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
1: Yes, सभी के लिए let's go back to B Town. Bollywood के सीरियल किस और इंटेंस परफॉर्मर इमरान हाशमी ने एक बार फिर हेडलाइंस में छा गए हैं. एज ऑफ मिड 2026 इमरान हाशमी ने फैंस को बैक टू बैक दिए पावरफुल परफॉर्मेंसेज. उनकी कोर्टरूम ड्रामा जो है हक, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर काफ़ी बर्ज क्रिएट किया था. इंटेंस लोयर का रोल प्ले किया था उन्हें. वही एक्शन थ्रिलर दे कॉल हिम ओजी में भी उनका रग्ड और स्टाइलिश अवतार भी ऑडियंसेस को काफ़ी पसंद आया. एंड फैंस के लिए अभी सबसे एक्साइटिंग खबर आपको पता है क्या है? वो है इमरान हाशमी की कल्ट क्लासिक फिल्म का सीक्वल आवारापन 2. जी हाँ, इमोशनल स्टोरी है, डार्क एक्शन भी है और सोलफुल म्यूजिक के साथ भी हमारे फैंस एंटरटेन्ड होने वाले हैं. तो अभी के लिए आप बस ट्यून रहना आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ एंड कीप एंजॉयिंग द म्यूजिक.
2: You're listening to Musty Mornings.
0: Musty Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

क्या है ना कि अपनी जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अपनी लाइफ में आएगी ना, तो फिर देख अपना लक कैसे बदलता है।

0: जो आदमी लिमिट पे रहता है वो जिंदगी पर लिमिट नहीं रह जाता है।
1: लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं, मैं अपनी जन्नत बनाता हूँ।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: यानी आज सभी के लिए मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं।
2: राइट, हमारे इतने सारे लिसनर्स जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। और किसी को विश करने के लिए मौका मत खोना। चलिए, यहाँ पर कौन आ गया?
0: एंड अभी नाम नहीं लिखा है पर गुड मॉर्निंग भेजा है निर्मणि और विकास। आप कैसे हो? पूछ रही आप कैसे हो?
2: हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ये भी ठीक है।
0: और बोल रहे हैं स्वीट सा सॉन्ग डाल दीजिए हमारे लिए। एंड वी हैव हमारे बड़ी यालिश जो एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती को, एंजॉय कर रहे हैं गानों को और बोल रहे हैं, विश कर रहे हैं आप सभी को हैप्पी थर्सडे। एंड एक आप है, नाम नहीं लिखा आपने लेकिन मैसेज है, इट इज रेनिंग राइट नाउ, और डेडिकेट करना चाहते हैं आप गाना अपने हस्बैंड सचिन बिट्ठू के लिए जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस समय। एंड वी हैव ऑल्सो नेक्स्ट मैसेज, अब्दुल जी सायरा बानो गाना मांग रहे हैं अपने लिए। और वी हैव द वेडिंग एनिवर्सरी टू नाना संजीव एंड पुपू फिया की तरफ से गुड विशेज सोन कुलेश युवियन परी थियो एंड ओल जियानव फैमिली एंड किस्टू फैमिली रोशनुआ से। एंड यस, अनसुया जी भी कनेक्टेड है न्यू होव से, बोल रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं गानों को और मस्त फुल वॉल्यूम पर वाइब कर रहे हैं। एंड वी हैव फ्रांस से संगर जी जो हर रोज़ की तरह कनेक्टेड है हमारे साथ। तो ऐसे ही स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और वाइब करते हैं इस नेक्स्ट सॉन्ग के साथ आपके ही आरम जो रेडियो मस्ती पर।
1: रेडियो मस्ती हिट म्यूजिक ओनली। Feels a musty. Radio musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे काफी लोग हैं जो कि अभी ऑनलाइन गेम के अंदर घुस चुके हैं. When it comes to ladies, तो ऑनलाइन गेम नहीं होता, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती
3: होती है.
2: वैसे कभी कभी लगता है ना कि जैकेट या पुलओवर्स को देखकर आपको लगता है यार कितना स्मार्ट लगने वाला हूँ मैं. लेकिन फाइनली होता है कि आप जब उसको पहनते कहते हैं ये किसने टेंट पहना दिया. मतलब साइज, हाँ काफी लोग इसको पसंद करते हैं. वैसे ये जरूरी है कि आप साइज गाइड के अंदर जरूर जाएं. और एक और चीज करिए, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो डू कंपैरेटिव प्राइसिंग. हो सकता है कि अलग अलग सप्लायर से आपको अलग अलग प्राइस मिल रहे हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कभी आपने कुछ सिलेक्ट किया उसको कार्ट में डाल लें, कार्ट में ऐड कर लें. फिर आप देखें कि अब जो सेलर है उसको धीरे धीरे अच्छा प्राइस देगा, रिड्यूस करेगा कि आप खरीद रहे हैं. फाइनली आपको रिमाइंडर्स आएंगे. सारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है. एंड नॉट टू फॉरगेट, इतने सारे लोगों ने जहाँ पर पहले खरीदा है तो उनके रिव्यू ज़रूर पढ़ लें.
3: ये जरूरी है.
2: दे माई टॉक अबाउट क्वालिटी, उसकी लुक, उसकी फील. और फिर जब आपको भी वो मिले तो अपना रिव्यू डालना ना भूलें, क्योंकि कभी आपने भी रिव्यू इस्तेमाल किया तो आप डालेंगे तो किसी का भला ही होगा. इसलिए ज़रूरी है टू कीप अ बजट. हर महीने कितना आप स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, क्योंकि पता नहीं लगता है. इट्स एट द क्लिक ऑफ अ बटन. और फिर लगता है कि अरे बटन ने मेरा वॉलेट भी खोल दिया. इसलिए ज़रूरी है टू मेंटेन अ बजट. इनफ्लो आउटफ्लो, गानों के मजे लो.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: And इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर अस टू गो
3: राइट. अभी थोड़ी देर में रेट्रो रिदम, डोंट फॉरगेट, बाहर से तो के बीच में तो म्यूजिक गोना चेंज, लेकिन हम कभी नहीं बदलेंगे. 24/7 देंगे आपका साथ. अब सीधा कल होती है मुलाकात.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: radio musti. Feel the musti.
1: Radio musti. RM2 radio musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
5: Check your time. It's exactly noon. Aaj sunte hain samachar Karuna ke saath. Namaskar.
6: Namaskar Ginisha. Sabhi ko namaskar. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने सरकारी संस्थानों में वित्तीय अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट 2023 के तहत जारी नई गाइडलाइंस में एफसीसी ने सार्वजनिक संस्थाओं से मानकीकृत कार्य प्रणाली मैनुअल यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मैनुअल्स लागू करने को कहा है। कई सरकारी संस्थानों की जाँच के दौरान आयोग ने पाया कि सार्वजनिक खरीद यानी प्रोक्यूमेंट, लाइसेंस जारी करने और कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लिखित और स्पष्ट प्रक्रियाओं की कमी है। एफसीसी ने यह भी बताया कि प्रक्रियाओं में सुधार के लिए पहले दी गई लगभग 90% सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम और केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध मजबूत हुए हैं। अफ्रीका

0: काफू वॉल शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने केन्या के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक करार दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुतो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। इंडियन चाइल्ड लेबरहुड कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडियन चाइल्ड लेबरहुड प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है जिसका सचिवालय मॉरिशस में है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर के गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को महान नेता कहा और चीन के साथ शानदार भविष्य की बात कही। द्विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी शुरुआती टिप्पणी में ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति से मिलना और उन्हें अपना दोस्त कहना उनके लिए गर्व की बात है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रॉयल रोड पेलघन सेबास्तोपोल में 50 साल के 50-year-old श्री रामजीत जुगोरू जो जौ से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेलघन सेबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए पेलघन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टर 2 PM। गोटवायाल कथसे में 69 साल के 69-year-old श्री गौकरण जांगी जो माओ से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान गोटवायाल कथसे से उठाकर दाह संस्कार के लिए डिफ्रिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टर 2 PM। और बंजन लेन लाल माटी में 82 साल के 82-year-old श्री शिवनंदन भजन जो शिव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 इनके मकान बंजन ले लाल माटी से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौडिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो अथ 9 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: स्टूडियो की घड़ी में 12:11 हो चुके हैं और रेट्रो रिदम यहीं से शुरू होता है आपके और हमारे बीच में। अनऑरेंटेड रेडियो मस्ती थर्सडे 14 मई 2026 और गणेशा हाजिर है आप लोगों का साथ देने के लिए इस 2 घंटे की म्यूजिकल सफर में, जहां पे हम आपको उन पुरानी गलियों में फिर से लेके जाएंगे जहां पे आप अपने खूबसूरत यादों के साथ बस फिर से एक बार वक्त गुजारना चाहोगे। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े प्यार से तो हम आ गए हैं साथ देने के।

और आपको याद दिला दे द शोज लाइव ऑन टिकटॉक राइट नाउ आरएमटी रेडियो मस्ती, फॉलो आवर पेज ऑन टिकटॉक एंड ऑफ कोर्स हर बार जितने भी बार हम सभी लोग लाइव आएंगे यू आर गोइंग टू बी नोटिफाइड एंड यू कैन एंजॉय द रियल मस्ती राइट देयर। सो थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए और बस यूं ही साथ देते रहना और अपनी खूबसूरत यादों को आप हमारे साथ शेयर करते हैं थ्रू योर डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 पर 5499 12 94।

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, ये तो जिंदगी की राज है। एक्चुअली इस राज को अगर राज रहने दे तो ही अच्छा है। कुछ भी हो, अगर आपकी जिंदगी में खुशियां भी हो, गम भी हो, लेकिन हंस के तो ये काटना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। देखा जाए, ये जो गाना है हमने स्पेशली डेडिकेट किया फॉर यू माय डियर, जो हमारा साथ दे रहे हैं आर सिंह। आर सिंह, आई डोंट रिमेम्बर आप कहाँ से हो। यस, आप हमें सुन रहे हो एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू अस एंड वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आर एंड टू रेडियो मस्ती। वैसे देखा जाए तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने मांग की है एंड आई प्लेड इट फॉर यू एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा। वैसे हम लाए हैं आज ये इस टाइप के मेलोडी जो दिल को छू जाए। वैसे जिंदगी प्यार का गीत है, हर पल एक नया हमेशा एहसास रहता है। देखा जाए तो हर धड़कन में बसी है एक प्यारी सी आवाज। सुनते रहे, गाते रहे हमारे साथ, क्योंकि जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी है मेरी जान, और प्यार का गीत कभी भी रोका नहीं जा सकता है। टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग राइट नाउ एंड लिसनिंग टू मी, सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर and keep on enjoying this beautiful and lovely purane gaane jo lekar aaye hain aaj aapke liye. Yes, I'm taking you down memory lane. Kyun? Kyunki aapke honton par muskurahat hum lekar hi aana chahte hain, kyunki in purane gaano mein basi hain aapki yaadein, aur yaadon ko taaza karne mein hum to mahir hain ji. We have Mr. Harsh Patel. So Harsh Patel is listening to us at the moment and enjoying these beautiful and lovely gaane. Thank you so much, bro. And keep on enjoying these lovely songs. And here we go. We have your dedications on 5499-1294 par. Hi, Madhvi. Madhvi, ye agla gaana aapke liye. Madhvi hamein sun rahi hai from Rose Hill. And she's working right now, so courage to you. Vishwani Duman from Vakwa. Abhi main kitchen mein hu. Khana. Khane ki tayari ho rahi hai. That's so sweet. Na jaiz movie agar kai gaana ho jaye barsaat ki mausam mein tanhai ki aram mein. हाय हाय, आप तो घर से निकले नहीं, फिर भी आप ये गाना सुनना पसंद करोगे। कोई बात नहीं मेरी जान, अभी थोड़ी देर में जरूर। अगर प्ले दैट जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। आपकी बहन इंदिरा के लिए, शारदान, सहेली नीला, प्रतिभा, शुभा, गीता, गजाधर, फैमिली के लिए और आपके लिए। संगर फ्रॉम फ्रांस एज यूजुअल ऑन रेंडेवू एंड ही वी हैव जाना। सो जाना, ये अगला गाना आपके लिए फ्लैग से, आप हमें सुन रहे हैं योर एट वर्क। रीमा, जिनीता, शिष्टा, अंशनी, सिल्विया, UV, Krishi, Siu, Sagan, Parivar ke liye. Thank you so much and keep on enjoying the good music. Amada, unko bukhar hua hai, severe pain ho raha hai, aray meri jaan dawai kha lo. Anyway, the next one to your love affairs in Australia. Ye raate, ye mausam, nadi ka kinara, kya baat hai, thodi der mein zarur gonna play that for you. To chaliye, to everyone watching us live on TikTok, here we go, this one goes out to you. And abhi we do have hamare pyare Sehra Banu ji and आपने गाने की मांग की है, चलिए आपके लिए भी, अब्दुल जी के लिए, यशुआ के लिए। एंड तरुण ने बोला है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए। चलिए सुनते हैं साथ में 5499-1294 पर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डेडिकेशंस। हियर वी गो, लेट्स एंजॉय इट माय वे। यू आर लिसनिंग टू गनीशा राइट नाउ इन योर रेट्रो रिदम।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: वेलकम टू चेकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में 12:36 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ इन योर रेट्रो रिदम, जहां पे ये खूबसूरत लवली 70s, 80s एंड इवन 90s के गानों को हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक के बाद एक खूबसूरत गाने तराने, कुछ आपके पसंद के और कुछ हमारे पसंद के। जी हाँ दोस्त, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से, मन लगा के हमारा साथ दे रहे हो। एंड फिलहाल के लिए टू ऑल दोस हैविंग द लंच, हम तो आपको विश करना चाहेंगे बोन अपेटी। अगर आप यम्मी यम्मी गर्मा गर्म खाना खा रहे हो तो एंजॉय कीजिए और साथ में हमारे गानों को भी। और फिलहाल के लिए ऑन 5491294 पर आपका ब्यूटिफुल डेडिकेशंस, एंड जस्ट टू रिमाइंड यू वी आर लाइव ऑन टिक।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती
2: तो चलिए जी, ये हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडिता की आवाजों में, खासकर आपके लिए दिल का करार, टेकन फ्रॉम द मूवी संघर्ष। एंड दिस सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोज हू आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वाकई में जब ऐसे गाने हम खुद सुनते हैं, हमारे दिल को खुद करार आ जाते हैं, तो आई क्या रियली होप कि आपको भी सुकून, आपके दिल को सुकून और राहत जरूर मिल रही होगी बाय लिसनिंग टू दीज ब्यूटीफुल एंड लवली सिलेक्शंस जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती। वेल गाइस, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:50 हो चुके हैं। टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे ऑन द 14th of May 2026, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे। तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहे, और हमेशा याद रखना जी कि जिंदगी का मैजिक है मोमेंट्स में, और हर मोमेंट को दिल से जियो और ऐसे ऐसे मोमेंट्स को क्रिएट और रिक्रिएट करते जाओ अपनी जिंदगी में। हर छोटी जीत, हर हंसी, हर गीत ऐसे दिल खोल के जियो, प्यार बांटते चलो और हर पल को फुल एंजॉय करो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जब भी आप सुनते हो ऑरेंज टू रेडियो मस्ती, अगर आपका फेवरेट गाना बज रहा है ना, सो डोंट हेजिटेट, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, जोर जोर से गाना है तो गा लीजिए, नाचना भी है तो नाच लीजिए, कि फर्क पहनता है जी, बस आपको खुशी तो देखना है हमने ही। और वैसे बबीता जो है पोंकलविल से, वो भी हमारा साथ दे रही हैं। सो अगला गाना आपके लिए, और किसी ने बोला हाय ब्यूटीफुल, अच्छा आप मुझसे बात कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ये अगला गाना आपके लिए माय डियर, एंड आप बोलते हो कि ये जो आप प्रोग्राम करते हो ना, आप मेरी मदद करते हो कि मैं अपने घर के कामों को जल्दी जल्दी कर सकूं। अभी मैं घर आ गई हूं काम से। दैट्स हेमा, सो कुराज टू यू माय ब्यूटीफुल लेडी, एंड गुड आफ्टरनून। लंच टाइम ललिता जी जी से बोन आप इट्स टू यू एंड एंजॉय द शो। एंड वी डू हैव बाबू से धनेश्वर जी सुन रहे हैं, पत्नी सुनीता, देव रेखा एंड संजीव, निशा, रानी, मीना, ऋषि, देवडोस परिवार, सन्नीचर परिवार एंड कौलेसा परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये मेरे लिए आपने इतना प्यारा सा फोटो भेजा हमारे लिए, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, सेव मुरकू, सेव बोलते हैं ना उसको, हाँ जी,

जो भुजिया जो नमकीन होते हैं। सिया जय सिया राम आपको भी। अभी मैं से अच्छा सेव बोलते सेव बना रही हूँ और आपको सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छे गाने लगा रहे हो, धन्यवाद जी। और आप हो हमारी प्यारी कृष्णी बिस्मोहन जी जो हैं फ्रॉम कॉफ़को, सो कुआज टू यू एंड आपको भी हमारा प्रणाम माय स्वीट हार्ट। तो चलिए जी, अगला गाना स्पेशली हम लेकर आए हैं उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं, अविदा सौगात, विमला लक्ष्मण हैदर जी, एंड वी हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू एंड यादव। सो डीपी ग्रिल एंड कैटरिंग सर्विस बोल रहे, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच माई डियर। एंड चलिए जी वीना, ये अगला गाना आप ड्यूटी पे हो अभी नेहरू हॉस्पिटल से, सुंदर लुबुगन बुबेन जगदावा ऑल स्टाफ के लिए। ऑफ कोर्स इट्स अ प्लेजर फॉर एवरी स्टाफ अराउंड द मॉरिशस, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू कैरव रामपासाद फ्रॉम प्लान दे पपाई, दैट्स अनिश्ता की तरफ से, शी इज वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक।

0: आइए सुनते हैं समाचार। सुमेरा अकबर अली के साथ नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। रियों बेल के एक बंगले में रोज बेल की अधसूनिक कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकीन को जब्त किया। कल इस बंगले की तलाशी ली गई जिसकी मालकिन जयंती देवी जगरू हैं। वो फिनिक्स से है और पुर्तगाल में रहती हैं और अभी मोर्शस में हैं। उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी इल्जाम दर्ज है। एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। कोकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपये की बताई जा रही है। सार्वजनिक संस्थाओं में वित्तीय जुर्मों के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन अपना संघर्ष और ठोस कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट 2023 के नए नियमों के हवाले से एक रिपोर्ट में एफसीसी ने सार्वजनिक इदारों से स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं के लीफलेट जारी करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करे। विदेश में अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया। कुछ हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे प्रस्तावित किए थे लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड कॉन्जाबल में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड जनाब महमूद फारूक महमूद अली जनाब महमूद फारूक महमूद अली जो फारूक के नाम से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज तीन बजे इनके बेटे इम्तियाज महमूद अली के घर रॉयल रोड कॉन्जाबल से उठाकर दफनाने के लिए कॉन्जाबल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा।

0: टुडे एट 3 PM। बॉम्बू में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री ज्ञानदत्त बिहारी जो ओंगले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी शुक्रवार को 10 बजे इनके घर अवेन्यू मोंगी बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजीन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉयल रोड 400 में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री गौकरण जांगी जो माओ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनकी पत्नी पुनावती जांगी के घर रॉयल रोड 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टू डेट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti.

Retro Rhythm. Hey guys, welcome back in the second hour of this beautiful show, and that's your beautiful and lovely here, Retro Rhythm with me, Ginisha, on RM2 Radio Masti. I really hope that everyone is having a good time by enjoying these beautiful and lovely mesmerizing gaane. Ji haan dosto, yaadon ko taaza karte karte honton par muskurahat aa hi jaati hai, aur kabhi kabhi kuch yaadein samne aa jaate hain, bilkul ek movie ki tarah aankhon ke samne, jaise ki aap apni hi जिंदगी की मूवी देख रहे हो और आंखों में नमी आ जाती है। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपने उन खूबसूरत यादों को दोबारा हमारे साथ बस जी लेना। तो चलिए 5499124 पर सन मी योर डेडिकेशंस।

खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो लेकर आई है एंड आई गॉट योर डेडिकेशन सीएस, आपने बड़े प्यार से लिख के भेजे हैं ऑन 5499124 पर। चलिए लेट्स चेक इट आउट, किसने किसको याद किया है। प्रीतम सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, सो प्रीतम जी आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर एंड द बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम मेधा मनीष शीतल विक्की एंड रिटिना नितिन संगीता श्रेया आर्यन नील खुशील ऋषभ एंड ऑल डी एलन परिवार जो है फ्रॉम मोटाई ब्लांश। प्रणाम टू यू माय डियर, आपके दोस्त के लिए एक गाना हो जाए जो गाने एंजॉय कर रही है नंदा लुलमान एंड सोनी एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम कल्याणी ऑफ कांटोरेल। वी हैव पूनम डीनी मोहन फ्रॉम गाना, शी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ गेटिंग रेडी टू गो टू वर्क। हाँ जी बोलते हैं स्विमिंग हो चुके हैं, अब तो गाना हम सुन रही हैं, सुनते सुनते हम तैयार हो जाएंगे। दैट्स अ स्वीट माई ब्यूटिफुल बेब, सो बो कोराज फॉर द डे। Fidu from France, enjoying selection, I would love to hear a song, Is Tarah Aashiq Ka, Asar Toh Hum Zarur Chhodke Jayenge Meri Jaan, wishing nice afternoon to all listeners, Kisi Ne Bola The Gaane Are Superb, Thank You Sangar, and here we go, Ye Agla Gaana, Akash Chetan Mansukh, Babu Ke Rehne Wale Ho Aap, Aapke Pure Parivar Ke Liye, Jinka Naam Hai Mansukh Families, Toh Chaliye, To All Those Who Are Truly, Madly, Deeply In Love With This Beautiful Show, Here We Go, This One Goes Out To You.

0: Retro Rhythm.
1: मरो स्पेशली फॉर यू आशा भोंसले और मोहम्मद रफी जी की आवाजों में, खासकर इन योर रेट्रो रिदम। वाकई में जी, ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम तो डेडिकेट करते ही रहते हैं आप लोगों के लिए इंटायर शो। टोल दोस्त जो अभी काम पे हैं, कुगाश्ती यू टोल दोस्त फॉर ड्राइविंग, हाँ जी आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे, हौले हौले, एंड ऑफकोर्स यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। लेकिन लेकिन रेडियो का वॉल्यूम हमेशा हाई रखो। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे गाने जब इंसान सुनते हैं ना, तो मन इतना खुश जाता है कि मैं क्या बोलूं आपको। वी डू हैव कल्याणी फ्रॉम सैंक्वा, द नेक्स्ट वन आपके हस्बैंड के लिए, हाँ जी आपके हस्बैंड के लिए कृष्ण, और आपके दोस्तों के लिए जो सीएमटी कंपनी में काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच माय डियर। शतुबेना से ज्योति, ये अगला गाना आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मदब परिवार के लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। आयशा, तेजल, तनवीर, रायन एंड रायना, एंड वी डू हैव क्या नाम है, एंतारा शांत ऐसे कुछ लिखा है, वनीशा, वर्षा, कामलाव का

0: 4 बोन, दे आर एंजॉइंग द शो, और बच्चे भी हैं. ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम. थैंक यू सो सो मच फ्रॉम ग्रोबियो. आई हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू माय डियर संपत एंड फैमिली, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम विदुषी एंड फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, लव यू ऑल. अमिता मुहबियर फ्रॉम बोनाके. थैंक यू कौचे से आयशा अनिश अक्षय अंजू एंड मॉम एंड रीता सिगुलम परिवार के लिए. एंड हियर वी गो, ये अगला गाना I have it for Aisha, Tejal, Tanvir ke liye bhi, and especially selection is just large of Abhini, Darren Shwetara, and Ravish Prishalavish and Apadu families. Thank you and hi Kuku, hi Shamila. The next one goes out to you, my dear. Itne sare dedications, kya bolu, kya, kisko, agar kisi ko maine miss kiya, so please, I'm sorry. To chaliye ji, ye agla gana hum dedicate karna chahenge specially for you, little Athar Athriya of New Grove, from Dada Anand and Dadi Sadhna, and especially for you, Papa Divesh and Mama Prerna, Chacha Adarsh and Chachi Vashikinam. So we do have the next one for you, Prakashwati from Belgium. She's saying, nice selection. Thank you, sweetheart. And enjoying lovely gaane and listening to all these lovely songs, Sahanji. And ye agla gaana especially aapke liye, my sweetheart, and that's Gayatri. Gayatri, bahut bahut shukriya aapke is message ke liye. Anita from Fikonfla ki agla gaana for you, and happy Thursday to you, my dear, and to all those who just saath de rahe hain. Bahut bahut shukriya ji. Chaliye ji, aashiqui ki galiyon mein chalte hain. Aapko leke jayenge is khoobsurat era mein jahan pe aap gungunaya karte the kisi ke liye aur unko bolte the aankhon mein aake dal ke ki मेरी जिंदगी है तू.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम।
1: तो चलिए जी, 1:55 हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुड बाय टू यू। बहुत ही मजा आया आप लोगों का साथ देकर। हम तो यहाँ आते हैं प्यार बरसाने के लिए आप लोगों के ऊपर, और ये जो खूबसूरत गानों की बरसात भी हम लेकर आते हैं उसमें आप भीगते चले जाते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। यूं ही साथ निभाते चलो ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, दैट इज RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आने वाली है थोड़ी देर में हमारी प्यारी है आरजे परी विद सम लेटेस्ट गानों का सिलेक्शन एज वेल लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज फॉर यू। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय। वैसे कल फिर मिलेंगे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 12 से 2, एंड देन उसके बाद 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: तो चलिए जी यूं ही साथ देते रहना एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स शार्प 2 पीएम.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
1: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार आदाब. रियों बेल के एक बंगले में घुस बरकियात सुनी कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकेन को जब्त किया और कल इस बंगले की तलाशी ली गई जिसकी मालकिन जयंती देवी जगू हैं. वो फिनिक्स से है और पुर्तगाल में रहती हैं. 40 वर्षीय ये महिला मोर्शस में है और उसे गिरफ्तार किया गया. उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया. एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया. कुकिंग की कीमत 1.1 मिलियन रुपये की बताई जाती है. सार्वजनिक संस्थाओं में वित्तीय जुर्मों के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन अपना संघर्ष और ठोस कर रहा है. फाइनेंशियल क्राइम्स एक्ट 2023 के नए नियमों के हवाले से एक रिपोर्ट में FCC ने सार्वजनिक इदारों से स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं के लीफलेट जारी करने की मांग की है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करे. विदेश में अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया. कई हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे भी प्रस्तावित किए थे लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ. अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रोहरुद कौजाब में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड जनाब महमूद फारूक महमूद अली

0: जनाब महमूद फारूक महमूद अली, जो फारूक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज तीन बजे इनके बेटे इम्तियाज़ महमूद अली के घर रॉयल रोड कौंजाबले से उठाकर दफनाने के लिए कौंजाबले का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.
4: सो वेल फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका 2:07. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूँ परी आपके साथ यहाँ पर.

लेकर आए हैं वी टाउन की खबरें आपके लिए, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके नाम, और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती. साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM, और कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स होंगे आपके लिए, कुछ रोमांटिक गाने, कुछ लेटेस्ट पेपी सॉन्ग्स, सब कुछ होने वाला है आपके नाम. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। इट्स 2:23 और थैंक यू सो मच जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डियर लिसनर्स, दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। चलिए बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान, जो एक बार फिर अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर शाहरुख खान की नई शानदार और महंगी एसयूवी

0: से ही लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के शौकीन है। साथ ही में उनके कार कलेक्शन में पहले से ही जबरदस्त गाड़ियां और अब इस नई एसयूवी की एंट्री से उनका कलेक्शन अब और भी शानदार हो गया है। शाहरुख खान की नई कार कैडिलैक एस्केलेड है, जो अमेरिका की सबसे पॉपुलर और आलिशान फुल साइज लग्जरी एसयूवी मानी जाती है। कैडिलैक कंपनी भारत में अपनी गाड़ियां नहीं बेचती, इसलिए इस कार को प्राइवेट तरीके से विदेश से इंपोर्ट किया गया है। इस दमदार एसयूवी में 6.2 लीटर V8 पेट्रोल इंजन है और करीब 420 हॉर्स पावर से चलती ये गाड़ी है। भारत में भारी इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी की वजह से इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है और अभी के लिए तो शानदार कार कलेक्शन में जुड़ गया है ये एक नाम, शाहरुख खान। भाई हम तो कहते हैं कि एक एक्टर जो अपनी जिंदगी जीते हैं किंग साइज, वो है वन एंड ओनली शाहरुख खान। सो अभी के लिए तो चर्चाओं में है उनकी नई एसयूवी।
1: Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
0: उन्हीं की फिल्म का डायलॉग है, एक ता वड्डा दिल और दूसरे ते वड्डे वड्डे बिल। यहाँ तो हम बड़े दिल के साथ आए हैं और बस ये जो खबरें हैं वो हमारे लिसनर्स तक पहुँचा रहे हैं। अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम और उनके जो फैंस हैं उनके नाम शामिल होता हुआ ये गाना। उन्हीं की फिल्म दंगी का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। फेरी का साथ है टिल 4 PM गर्मा गर्म खबरों के साथ, कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके नाम साथ दे रहे हैं आप भी। सो आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 2:37 और बात करेंगे 75th कांस फिल्म फेस्टिवल। वहां से आलिया भट्ट का नया लुक सामने आ गया है और ये लुक उनका लास्ट रेड कार्पेट लुक है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो ऑफ शोल्डर ब्रोकेड गाउन पहने नजर आ रही है और उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आलिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सो कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है। उन्होंने एक बार फिर से अपने रॉयल अंदाज से सभी का ध्यान अपनी कांस लुक में आलिया ने ऑफ शोल्डर ब्रोकेड गाउन जिसमें गोल्ड और मरून कलर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इस गाउन पर की गई हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को और भी हैवी टच दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने मिनिमल मेकअप किया है। उनका ग्लोइंग बेस, हल्का कॉन्टो और बोल्ड लिप्स उनके लुक को और भी ग्लैमरस और एलिगेंट बना रहे हैं। वहीं हेयर स्टाइल में आलिया भट्ट ने स्लीक बन बनाया हुआ है जो उनके इस क्लासिक और एलिगेंट लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये सटल एंड ग्रेसफुल हेयर स्टाइल जो है उनके फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। साथ ही ये जो लुक है उनके फेस फीचर्स को हाईलाइट करते हुए उसे परफेक्ट फिनिश दे रहा है। ज्वेलरी में आलिया भट्ट ने एक हैवी चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स पहनी हुई है।

और उनके आउटफिट के साथ ये पूरी तरह से परफेक्टली मैच कर रही है। उनका ये लुक जो है वो काफी रिच और रॉयल नजर आ रहा है और हाथ में छोटा सा फैन कैरी करते हुए आलिया ने अपने इस लुक को एक यूनिक और विंटेज टच दिया है, जिसके साथ ये लुक और भी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। आलिया का ये रॉयल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। उनकी हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ नजर आ रहा है। सो दैट्स आलिया भट्ट फॉर यू, और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो वी कैन ओनली प्ले दिस गाना फॉर हर। And well, this one goes out for all the fans of Alia Bhatt as well, and for all the listeners of RM2 Radio Masti.

वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें, लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आफ्टर आलिया भट्ट, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। सो लेट मी टेल यू, हाल ही में वो अपनी आने वाली फिल्म किंग की जो शूटिंग है करने के लिए साउथ अफ्रीका से केप टाउन गई थी। हालांकि अब वो जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और वो मुंबई लौट कर आ गई है। गुरुवार को यानी कि आज ही के दिन उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपिका पादुकोण स्टाइलिश नजर आ रही है। उन्होंने ब्लू कलर का एक लूज कोट सेट पहना हुआ है और साथ ही इस आउटफिट के साथ उन्होंने कंफर्टेबल येलो शूज पहने हुए हैं और ये जूतों ने यानी कि ये जो शूज थे इतने स्टाइलिश थे कि इन जूतों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अपने कपड़ों से अपने बेबी बम को छिपाने की कोशिश भी है और दीपिका ने ब्लैक सन गॉगल्स और पोनीटेल हेयर स्टाइल के साथ सिंपल और स्टाइलिश लुक से अपना जो लुक है उसे कंप्लीट किया। सो लेट मी टेल यू दैट उनकी फिल्म किंग को लेकर बताया जा रहा है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। कुछ दिन पहले शूटिंग से उनके और शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी जो किसी गाने की बताई जा रही थी और इसमें दोनों का अंदाज और उनकी केमिस्ट्री बहुत खास नजर आ रही थी। हालांकि फोटोज और वीडियोस वायरल होने के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फैंस से अपील की कि फिल्म के लीक हुए वीडियोस को किसी से शेयर ना करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और आपको एक अलग और एक डिफरेंट एक नया अनुभव देखने को मिल सके, इसके लिए पूरा क्रू काफ़ी मेहनत कर रहा है। सो फिल्म की सरप्राइज को सिनेमाघरों में देखने का आप इंतज़ार करें। बता दें कि इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और माफ्लिक्स पिक्चर्स जो है वो मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये फिल्म 26 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जियाल, साथ में अभय वर्मा, अक्षय ओबरॉय एंड सौरभ शुक्ला जैसे शानदार कलाकार साथ नजर आएंगे। सो वेल, अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने एंड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें एंड सम लवली सॉन्ग्स आपके लिए आपकी आफ्टरनून को खास एंड स्पेशल बना रहे हैं हम राइट हियर ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। सो वेल फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499124 पर अभी के लिए फ्रॉम वालिद प्रीत हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी नानी जो है शोभा कालीचरण। सो वेल, आपके नाम ये ब्यूटीफुल सा गाना इक्वली गोज आउट आपके पूरे कालीचरण और बिसेसा परिवार के नाम एंड एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499124 पर।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार और आदाब. सर्कुलर रिसाइकलिंग इकोनॉमी के संदर्भ में DKG प्लास्टिक पाइप्स उद्योग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में खासियत रखता है और आज ये इलाकाई स्तर पर पहुंच गया है. हिंद महासागर आयोग की एक्सप्लोआ परियोजना के संदर्भ में एक पहल के तहत ये उद्योग प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष करता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए वो इलाकाई सतह तक पहुंच गया है. गयोंबेल के एक बंगले में रोज बेल की आदसूनी कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज़्यादा कुकीन को जब्त किया और कल बंगले की तलाशी भी ली गई और मालकिन जयंती देवी जगरू को गिरफ्तार किया गया. उसकी उम्र 41 साल की है. उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है. एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया. कुकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जाती है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करे. विदेश में मध्य पूर्व की जंग के चलते पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि नोट की जा रही है. इस बीच भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. नई दिल्ली ने ऐलान किया कि वो सोना चांदी और प्लैटिनम पर टैक्स की कीमत को बढ़ा रहा है. इसका मकसद विदेशी मुद्राओं के रिजर्व की रक्षा करना है और व्यापारिक घाटे को कम करना है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. नंबर 28, नंबर 28 डॉक्टर हसन साकिया लेन रुजहिल में 94 साल की 94 years old बीबी जुबेदा सुब्राची पैदाइशी नाम चमन इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज तीन बजे इनके घर डॉक्टर हसन साकिया लेन रुजहिल से उठाकर दफनाने के लिए फेनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है. फ्यूनरल टुडे एट 3 PM. रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जोगुरु जो जों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेलघा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
4: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well friends, warm welcome. 3:06 हो गए हैं Thursday afternoon. It's 14th of May और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं हूं परी आपके साथ and it's time for your Bombay Talkies. B-Town की latest गर्मा गर्म updates आप तक पहुंचाते हैं 2 से लेकर 4 बजे तक Monday to Friday. और आज तो है Thursday, कल होने वाला है Friday, उसके बाद weekend. वाह जी वाह, होने वाला है बहुत कुछ खास and special आपके लिए. जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि Friday का दिन जो होता है वो हमारी जो Bollywood industry है उसके लिए काफी important होता है, because Friday के दिन ही तो मूवी रिलीज होती है. और उसी फ्राइडे को किस्मत का फैसला होता है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कैसा कमाल किया है. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग प्रेडिक्शंस भी लगा रहे हैं. सो इसी शुक्रवार यानी कि 15th ऑफ मे को बॉक्स ऑफिस पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो रिलीज होने जा रही है. और फिल्म की कास्ट की अगर बात करें सो इसमें नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान एंड रकुल प्रीत सिंह. प्रमोशंस में ये लोग अभी के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस से फिल्म को लेकर जो इनपुट आ रहा है वो मेकर्स की नींद उड़ा सकता है. आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म थामा ने 24 करोड़ की ओपनिंग की थी, यानी कि 24 करोड़ की ओपनिंग की थी. लेकिन इस बार का जो प्रेडिक्शन है उसका मतलब जो ज़्यादा उम्मीदें थी इस फिल्म के साथ उस पर ये फिल्म खरी उतरती नज़र नहीं आ रही है. जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इस फिल्म का बज कम होता जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है बात करेंगे इसको लेकर. लेकिन चलिए अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बात हुई है फिल्म पति पत्नी और वो दो, सो अभी के लिए उसी फिल्म का ये लेटेस्ट ट्रैक आप सभी के नाम.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: सुबह 3:15 हो रहे हैं और जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे फिल्म पति पत्नी और वो दो जो रिलीज होने वाली है कल, यानी कि दिस फ्राइडे ऑन 15th of May. सो पहले रिपोर्ट्स थी कि ये जो मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म है 6 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ले सकती है और रिलीज के एक दिन पहले आंकड़े कुछ और कह रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की कमाई को लेकर प्रेडिक्शंस दिए गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक पति पत्नी और वो दो 3 करोड़ से 5.50 करोड़ के बीच अपनी ओपनिंग कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग में कोई बज नहीं दिख रहा है और इसका सीधा असर इसके पहले दिन के आंकड़ों पर पड़ सकता है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म का जो पहला दिन है उसका कलेक्शन 3.50 करोड़ के आसपास हो सकता है. और बता दें कि इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि 2019 में आई फिल्म पति पत्नी और वो, इसकी ओपनिंग के मुकाबले ये आधा भी नहीं कमा पाएगी. और बता दें कि इस फिल्म का पहला पार्ट पति पत्नी और वो ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.1 करोड़ की कमाई की थी और यह बात कर रहे हैं इन द ईयर 2019 में 9 करोड़ की ओपनिंग हुई थी इस फिल्म की. इसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर लीड रोल्स में नजर आए थे. 84 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म ने और ये फिल्म रही थी काफी बड़ी हिट. लेकिन अब पति पत्नी और वो दो रिपोर्ट्स तो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है. अभी के लिए तो कुछ कमाल हमारे गानों के साथ, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप, सो वी हैव दिस वन, तिरछी टोपी वाले जंगल एडिट फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ.
5: RM2 Radio Musti.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.
1: And well, friends, it's 3:24. After the song from the film Stree 2, अब वक्त है that धड़क टू का गाना हम आपके लिए चलाए. That's a beautiful romantic गाना. दर्शन रावल जोनीता गांधी की आवाज़ है ये गाना dedicate कर रहे हैं आपके नाम. Dearest गायत्री जी साथ दे रही हैं आप. And thank you for your goody good wishes. अभी के लिए हम भी भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार with this beautiful song. Dedicating this one आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए. और वेल कहते हैं एंजॉयिंग द सिलेक्शंस. भूत बंगला देखने गई थी एंड माय गॉड फॉर मी इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. लेकिन गाने अच्छे थे एंड वेल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रोशनी जी. अभी तक हमने तो नहीं देखी है और रिव्यू सुनने के बाद मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं जाऊं. लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग. यहां पर ऐसे ही मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं इस फिल्म को लेकर. किसी को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और किसी को ये फिल्म एकदम लगी टोटल वेस्ट ऑफ मनी. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिव्यू. अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम रोशनी जी साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन रेडियो मस्ती. एंड यहां पर आ गई है पिक्चर टी टाइम. एंजॉय कर रहे हैं वाजीवा. सो थैंक यू सो मच यलेश साथ दे रहे हैं आप सुरिनाम से सभी शाम परिवार के नाम. वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इक्वली गोज आउट फॉर ईच एंड एवरीवन जो जुड़े हुए हैं हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ. मैं ऊपर ही आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: तो आफ्टरनून टाइम है दोस्तों, इट्स थर्सडे आफ्टरनून एंड 3:36 हो रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ, इट्स योर बॉम्बे टॉकी। इस बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। सो वेल, स्मिता पाटिल की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से होती है। उन्होंने बॉलीवुड को मंडी, अर्थ, अर्ध सत्य जैसी शानदार कई फिल्में दी है। हालांकि 31 साल की उम्र में बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया और अब एक्टर प्रतीक ने अपनी माँ स्मिता को याद कर इमोशनल होते हुए इंस्टाग्राम पर स्मिता के यंगर डेज की एक पुरानी फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला एक कैप्शन भी लिखा है। प्रतीक ने सोशल मीडिया पर अपनी माँ स्मिता और अपनी फोटो का एक कोलाज शेयर किया है। इस कोलाज में माँ बेटे दोनों एक जैसा पोज देते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। जहां स्मिता पाटिल विंटेज फ्रेम में पोज देती दिखाई दे रही हैं, वहीं प्रतीक डेनिम लुक में उसी अंदाज को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं। प्रतीक ने कैप्शन में लिखा है, ये मुझे मेरी माँ से मिला है, और उनकी ये फोटो अब सोशल मीडिया पर हो रही है तेजी से वायरल। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो जैसे हम कह रहे हैं कि बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं, और बी टाउन में भी इमोशंस की कमी कहाँ है। अभी के लिए तो प्रतीक बब्बर रिमेम्बरिंग हिज मॉम स्मिता पाटिल, वन ऑफ द आइकॉनिक एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। और अभी के लिए एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम, एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। जैसे हम कहते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव, लाइफ में तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन जिंदगी भी तो एक ही बार मिलती है, सो इसको खुलकर जीना जरूरी है। अ सॉन्ग जो हमें बहुत सी बातें सिखाता है एंड ऑफकोर्स हैप्पी मूड को सेट करता है। सो दैट्स जीते जीते डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम, फ्रॉम द फिल्म वॉर टू, परी का साथ और रेडियो मस्ती टिल 4 PM।
4: RM2 Radio Mustang.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: वेल फ्रेंड्स, बॉलीवुड की खबरें तो आप तक हम पहुंचाते हैं इसी टाइम में, 2 से लेकर 4 बजे तक, और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी होती हैं ऑन 5499-1294। अभी के लिए अपाटु परिवार गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और गातो बनान एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि एंजॉयिंग योर टी टाइम। दारिन श्वेता, रविश, प्रीशा, लवशान, अपाटु परिवार साथ दे रहे हैं गोष्ठवा से, गाना होगा आपके नाम। आनंद चांद चेंगाडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप भी, सो हैव अ वंडरफुल टाइम, नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू। बेनिता साथ दे रही हैं आप फोन चुसाक से, डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर आनंद, अरुण, मोहन, श्रीधि है और साथ में है निशा एंड ऑल मोहन फैमिली। साथ यहां पर गाना फॉर स्वीट बेबी अंजलि एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या, उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। तैयब जी साथ दे रहे हैं आप, सो प्यार भरा सलाम आपके नाम भी, नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एज वेल। साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रैक है ये है हमारी प्रकाशवती जी के नाम, साथ दे रही हैं आप साथ समंदर पार से, एंजॉयिंग द सिलेक्शन, सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू, हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। प्रकाशवती जी, गाना होगा आपके लिए। साथ ही डीजे देवसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती और थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। वेल, नेक्स्ट वन आपके लिए एंड विशिंग यू अ वंडरफुल थर्सडे अहेड। मिस्टर संगा फ्रॉम पेरिस हमारा साथ दे रहे हैं, एक्चुअली नॉट फ्रॉम पेरिस बट फ्रॉम फ्रांस हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, सो वार्म वेलकम आपका भी, गाना होगा आपके नाम। ललिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अभी, गर्मा गर्म कॉफी एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स, डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल योर कलीग्स, टीचर्स है पूजा, सेमी, स्वीटी, सनिका, राहुल, सोनिया, रवि, लरीला और साथ में है जीतन परिवार जो लावांचे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड वेलकम आर देवी चंद साथ दे रहे हैं आप भी, सो थैंक यू सो मच आपने ट्यून इन किया है रेडियो मस्ती के साथ।
5: RM2 रेडियो मस्ती।

एंड वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर प्यार का रंग तो गहरा हो रहा है और आपके और हमारे इस प्यार का नाता भी, यानी कि आपका जो प्यार है फॉर रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच. विद नेक्स्ट ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है मनीष मालेकर, योर रफ्तार वाइब्स.

जाते जाते जो आखिरी गाना है गोज आउट फॉर मिस्टर गोविंद रघुनंदन, वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा जो इस वक्त आपके साथ है, एंड फॉर ऑल रघुनंदन फैमिली थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड एंजॉय दिस वन, हैव अ ग्रेट टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check 4 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार आदाब. करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए. सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई और अफसरों ने पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम उठाए. मुशरस में कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ाने के संदर्भ में एक ढांचा तैयार किया जा रहा है. अधिकारी एक बहुत ही अहम फैसला लेने जा रहे हैं ताकि नए नियमों को लागू किया जा सके. मकसद स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है. इस संदर्भ में यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि इस परियोजना पर विचार विमर्श किया जा सके. रेजी में अनुसंधानकर्ताओं और इतिहासकारों ने एक सत्र में हिस्सा लिया. इंटर्नशिप लेबर रूट प्रोजेक्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने अपने ख्याल पेश किए. प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इतिहास विरासत और भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की कहानी पर जोर दिया गया. विदेश में भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया. ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा. इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि स्थानीय ज़रूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखा जा रहा है. इसके अलावा दाम पर असर से बचने के लिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाज़त दीजिए. नमस्कार और आदाब.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
6: Raftar Vibes, Filmy Rides.
0: RM2
3: Radio Musty.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए जी, गुड आफ्टरनून। 4:05 हो रहे हैं, एक्चुअली 6 होने को है। अब जुड़े हैं M2 रेडियो मस्ती के साथ। इस आफ्टरनून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आपकी सगी, आपकी दोस्त अर्जुन मनीष। मैं 7 तक आगे थी सम रियली नाइस ट्रैक। Just to pump it up the volume. Chilly all those still working right now. आपको कहना चाहते हैं बोगो हाय।

0: लाख दुआएं हमारे तो आपके साथ ही है। यहाँ पर 4:16 है जुड़े हैं आर इनटू रेडियो मस्ती के साथ। अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक। ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं कि जैसे कि हमारे जो वेदर है कभी कभी चेंज हो जाते हैं, ये जो आने वाले सीजन है ना, जो विंटर है, ये ऐसे ही अनाउंस होती है। सो अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक विद सावन में लग गई आग। ये तो हमारे काम ही है।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: Content popcorn? Yeah! Écoute ça! Bientôt, on pourra le plus content popcorn encore! Parce qu'il popcorn, pour faire la bouche douce! Un petit patience! Petit petit même!
1: Yeah! Ladies, get ready to shine! Fashion Galaxy is now open in Cupid! Step into a world of trendy women's wear, fabulous outfits and dazzling jewelry, all specially selected to make you stand out. Find us at Empire Square Mall, Saint-Jean-Edouard-Rimono Street, Royal Road, QPIP, just after QPIP Road Government School and the New Area Health Center. Visit us today or call on 5794-9466.
4: Débat climat peut continuer. Ben participant peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: RM2
2: Radio Musti
5: Raftar Vibes Filmy Rides
6: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: आप नोटिस कर रहे हो कि यार हल्की हल्की बारिश होने की वजह से आपको बस पानी को बॉइल करके पीना होना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसे मिस मत किया करो। ऐसे चेंज ऑफ सीजन में थोड़ी सी जो फीवर हो जाती है और यू नो सेहत को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एंड चूज व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डू इट विद अ फुल हार्ट।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: ऐसे होल हार्टेडली जब आप कुछ भी करते हो, चाहे वो पानी का उबालना या फिर किसी फ्रूट्स को काट कर खाना, ऐसे दिल के साथ अगर खाते हो ना, मन लगा कर, you'll feel full। लेकिन जैसे मायूस मायूस होकर कुछ खाना यार, आधे पेट जैसे खाते हैं। I just want you to be happy and be mindful, be present. इस वर्तमान में जीना सीखो। Oh, señorita. Have fun, enjoy कीजिएगा। 4:26 हुए हैं।

0: Rockstar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2,
2: Radio Musti.
3: All the perfect mix of songs for you. थोड़ा रिमिक्स पसंद नहीं और पुराने गाने दोनों जोड़ के ये गाना बनता है. ओल्ले ओल्ले, क्या तो मेरा पिया घर आया.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए स्पोर्ट्स संबंधित कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ उपस्थित है स्टूडियो में अरविंद जी. गुड आफ्टरनून टू यू.
5: गुड आफ्टरनून आपको मनीषमा. गुड आफ्टरनून लिसनर्स. सो सीजन धीरे धीरे समाप्ति पर है. वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द सीजन. बस दो मैच रह गए हर टीम के लिए और अभी से ही मैनेजर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर लिस्ट के लिए नाम आने लगे हैं, शॉर्ट लिस्ट आने लगे हैं. और दिस वन इज सरप्राइजिंग. सरप्राइजिंग नहीं क्योंकि ही हैज़ बीन डूइंग वेल, लेकिन द नंबर ऑफ मैचेस, केवल 15 मैचों के लिए माइकल कारिक मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया था, 10 मैच जीता एंड ही हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड इन द सिक्स मैन शॉर्ट लिस्ट फॉर प्रीमियर लीग्स मैनेजर ऑफ द सीजन अवार्ड. सो उसने रूबेन अमोरिम के स्थान पर यहाँ पर जगह ली और अब नॉमिनेशन, यही सबसे बड़ी बात है. तो केयरटेकर मैनेजर को नॉमिनेट किया जा रहा है, शायद ये पहली बार हुआ है. और आर्सेनल के से माइकल आर्टेटा, मैनचेस्टर सिटी से पेप ग्वार्डियोला, ये दोनों जो सीजन लीग टाइटल जीतने के लिए अभी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, इनका नाम है. फिर बोर्नमूव जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो सकता है, उसका डिपार्टिंग हेड कोच एंटोनी इराओला, उसको भी रखा गया है. और ब्रेडफोर्ड से केट एंड्रूज, संडरलैंड से रेजिस लुब्री, उनको भी नॉमिनेट किया गया है. जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए 8 खिलाड़ियों के नाम आए हैं शॉर्ट लिस्ट में. आर्सेनल का थ्रियो डेविड राया, गैब्रियल और डेक्लन राइस, मैनचेस्टर सिटी से एंटोन सेमेन्यो, अर्लिंग अलॉन, साथ साथ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान ब्रूनो फर्नांडेज, ब्रेडफोर्ड का स्ट्राइकर इगो चागो और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मिडफील्डर मॉर्गन गिब्स वाइट. तो ये विनर्स जो हैं डिसाइड किए जाएंगे पब्लिक वोट और पैनल ऑफ फुटबॉल एक्सपर्ट से. अब अवार्ड खिलाड़ियों के लिए भी, वैसे प्रीमियर लीग काफ़ी रोमांचक मोड़ पर है, दो मैच बचे हैं. और एनालाइज किया जाए तो आर्सेनल के लिए रिलेटिवली हल्का नहीं कहेंगे, लेकिन लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि खेलना है बर्नली के खिलाफ, दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रीमियर लीग, उनको रिलेगेट हो गई है. देन वी गॉट क्रिस्टल पैलेस जो जिसकी

0: नजर अभी केवल कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल पे है, जहां से वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जबकि मैनचेस्टर सिटी के साथ होगा बोर्नमूव, हु इज होपफुल ऑफ रीचिंग चैंपियंस लीग, और साथ साथ में एस्टन विला जो लिवरपूल के साथ एक टग ऑफ वॉर में लगा हुआ है फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट, द फोर्थ स्पॉट. तो आज नहीं, आज थर्सडे है ना, राइट, थर्सडे. तो कल लिवरपूल और एस्टन विला के बीच मैच होगा. इट्स एस्टन विला होम मैदान में, और कल ही कई मैच खेले जाएंगे. आज लीग वन में प्रमोशन प्ले ऑफ सेमीफाइनल ब्रैडफोर्ड और बोल्टन के बीच. स्पेन के ला लीगा में यहाँ पर सब कुछ हो गया है. बार्सिलोना इज द चैंपियन. बार्सिलोना की हार भी हुई कल, और आज वेलेंसिया रायो वालेकानो, जिरोना रियल सोसिडाद, रियल मैड्रिड का मुकाबला ओविएडो से होगा. फिर बाकी चैंपियनशिप में भी कई मैच खेले जाएंगे. और जिसे बताया कल एस्टन विला लिवरपूल. सैटरडे को प्रीमियर लीग के मैच नहीं है, क्योंकि सैटरडे को खेला जाएगा चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच द एफए कप फाइनल, और सभी प्रीमियर लीग के मैच संडे और मंडे को खेले जाएंगे. इनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट अर्ली किक ऑफ संडे को, फिर ब्रैडफोर्ड क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन सन्डरलैंड, लीड्स ब्राइटन, वुल्व्स फुलहम, न्यूकासल यूनाइटेड, वेस्ट हैम यूनाइटेड, और आर्सेनल आएगा बर्नले के खिलाफ खेलने. ये होगा मंडे मैच, जिसमें एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकता है आर्सेनल. इधर इतना तो कुछ फुटबॉल के बारे में. क्रिकेट के बारे में बता दें, इट्स हैपनिंग इन द प्रीमियर, इन द आईपीएल, जहां पर विराट कोहली दो मैच डक आउट, लेकिन तीसरे मैच में ही स्कोर्ड ए सेंचुरी. तो आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. टेबल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के बीच, जहां पर गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स अभी उनके पास हैं 13 पॉइंट्स 11 मैचेस प्लेड, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12 मैच खेलकर उसके पास हैं 16 पॉइंट्स. सो आज ये मैच जीतकर पंजाब किंग्स कैन क्लाइम अप टू 15 पॉइंट्स, लेकिन मुंबई इंडियंस उनके पास है केवल 6 अंक, सेकेंड लास्ट यानी 9th पोजिशन पर है. ये प्ले ऑफ, जो चार टीमें जाएंगी प्ले ऑफ में, टाइट होगा अभी इसके लिए, और जो देखना है कौन कौन सी टीमें उधर आगे जाएंगी. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. कल सुबह और जानकारियां आपको देंगे. और अगर आप लोग एमबीसी टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां पर एक वर्ल्ड कप दिखाई देगा. वर्ल्ड कप के नीचे क्या लिखा है?
1: G-28.
0: क्या होता है ये?
1: 28 डेज तक बस
0: वर्ल्ड कप शुरू होना. तो चलिए वर्ल्ड कप के बारे में जानकारियां, स्पेशल रूब्रिक आप लोगों के लिए.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
3: फीफा
0: वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में सह मेजबान को होस्ट कनाडा के साथ स्विट्जरलैंड, कतर और बोस्निया हर्जेगोविना है. कनाडा तीसरी बार के लिए वर्ल्ड कप में है. मेक्सिको 1986 में केवल ग्रुप स्टेज, कतर 2022 में भी ग्रुप स्टेज से एग्जिट. की प्लेयर्स अल्फोंसो डेविस जो बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी हैं, जोनाथन दाविद जो यूवेंटुस में खेलता है, और इस्माइल कोनी जो मार्सेय का खिलाड़ी हैं. स्विट्जरलैंड के लिए 13th वर्ल्ड कप अपीयरेंस. यूईएफए क्वालिफाइंग ग्रुप से अनडिफीटेड कोच मुरत यकीन को यकीन है कि द नाती बहुत आगे जाएंगे. तीन बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी ये टीम. ग्रानिट जाका, मैनुअल अकांजी, गोलकीपर ग्रेगो कोबे की प्लेयर्स हैं इस टीम में. कतर के लिए दूसरा वर्ल्ड कप, कोच हैं जूलियन लोपेटेगी, दो बार एशियन चैंपियन, की प्लेयर अकरम अफीफ, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर. बोस्निया हर्जेगोविना के लिए दूसरा फीफा वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, प्लेऑफ से क्वालिफाई हुई है. द ड्रैगन्स अपने 26 खिलाड़ियों के नाम दे चुके हैं. एडिन जेको 40 साल का अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है. सो ग्रुप बी में कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना.

0: के लिए तो अब इसमें स्विट्जरलैंड क्वालिफाई होने के लिए फेवरेट है, पर फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है ये सभी लोग जानते हैं। सो दैट वाज ग्रुप बी इन वर्ल्ड कप 2026।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: से ये जो टाइम है, ये जो उम्र है, ये जो जवानी है वापस तो नहीं आने वाली। दिल से और दिमाग से जवान रहो। आपके साथ आने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का। डियर लिसनर्स, वेलकम बैक इन द सेकंड आवर। 5:10 हो रहे हैं अब जो है आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ विद मनीष माफ कॉस टिल 7।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Quand le petit bébé, moi tu prothèse li compte tout kitsos. Mais Astella donne les mondes digital, moi pas toujours connais au qui s'en la lipé causé.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: चलिए इन दिस आफ्टरनून टाइम टू टेक अ ब्रेक ऑफ कोर्स तरस चाय पी लो तरस एंजॉय कर लो पकौड़े के साथ वैसे ये जो सर्दी का मौसम है आने ही वाला है ऐसा लग ही रहा है आ ही चुका है ना कहीं पर भागो की ओर कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर ओ सुंदरी चला रहे हैं आप सभी के नाम स्पेशली द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वुमन ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती ऑल दोस्त जो कि किचन में हमारे साथ दे रहे हैं

0: ऐसे प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं कि आपके दिल को करार पहुंचाए। तू ही तो है करार मेरा, कुणाल गंजावाला की आवाज में। वैसे थोड़ी देर में ट्रैफिक अपडेट, आप जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही टिल 7 PM।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: क्या बात है, यहाँ पर सुखबीर आपका साथ निभा रहे हैं यहाँ पर विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी के लिए यहाँ पर आपको ले चलते हैं स्क्रू पर, देखते हैं कि हमारी सड़कों पर कुछ हुआ तो नहीं है। आई जस्ट होप कि सब ठीक है, सब सही सलामत है। आगे ठिया कोस्ता बस सुकाई, थोड़ी देर में हम उनसे बात करते हैं।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती,
2: RM2
0: रेडियो मस्ती पर 5:26 हुए हैं। Here we go for the traffic updates. We have Constab Sukai. Good afternoon to you.
3: Et bon après-midi, Manishma, et bon après-midi à tout le monde. Alors, au niveau de la circulation, les dates du trafic routier, pour cette fin d'après-midi, pas de problème à signaler sur une route. Pas d'accident ou obstruction sur les axes principaux qui gênent vraiment le flot du trafic. Et à l'heure actuelle, comme vous avez dit, il y a un bon nombre de véhicules qui ne quittent la capitale et ça peut créer un ralentissement à la sortie sud à la hauteur du rond-point de Codan et à la sortie nord à la hauteur du rond-point de Rochebois et Richter vers le nord. Ensuite, nous pouvons remarquer un temps d'arrêt à la hauteur du rond-point de Réduit et Highlands vers le sud, mais le trafic reprend le flot après le pont de Wooten. Sinon, dans d'autres secteurs de l'île, pour le moment, ça roule continuellement. Voilà un peu au niveau de la circulation, l'état du trafic routier pour cette fin d'après-midi. Monsieur Zotou, bonne rentrée, bonne route. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres infos.
0: Thank you so much, Constab Sukai, for the information and the precise information also. Thank you so much.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.
0: Chalie, be very, very cautious on the road. To keep you company with the best of song selections, यहाँ पर तो मनीषमा बैठी है। इस आफ्टरनून में थोड़ा सी दीवानगी जरूरी होता है।

0: ढोली तारो ढोल ढोल बजाते बजाते हमारे साथ निभाते रहो। यह बड़ी हैवी गूफी फैशन टिप।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
0: अरे ढोल बाजे फॉर यू, आई गेट सम रियली नाइस ट्रैक जस्ट आपके लिए। आपके खिदमत में हाजिर हूँ मनीष माँ। एक पहली लीला मूवी से लिया गया ये गाना ढोल बाजे। साथ ही साथ एक थोड़ा सा एक छोटा सा फैशन टिप आपको बता दूँ कि यार फैशन टिप नहीं, इज लाइक ड्रेसिंग, इज लाइक यू नो एन आइडिया व्हाट यू वांट टू वेयर इन दिस आफ्टरनून या फिर टुमोरो। कल के लिए भी रख सकते हो। देखो ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी होता है, लेकिन स्टाइल भी उतना भी इम्पोर्टेंट है। या एक अच्छे सा स्वेटर यू नो या हुडी को जीन्स के साथ पहनो, ऊपर से जैकेट ऐड करो। वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो लॉन्ग एंड ओवरसाइज स्वेटर होते हैं वो स्लिम जिम के साथ बहुत ही अच्छा जचता है। यस, इसे थोड़ा सा लुक क्लासी और कोजी दोनों लगेगा। हल्के कलर्स के साथ एक कलरफुल वो जो स्कार्फ होता है या फिर एक कैप होता है वो, उसको पहनकर अपने विंटर स्टाइल को भी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। यहाँ पर जुड़ने के लिए इतने से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग आंसर रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
2: Radio Musti.

0: रानी ने पुन्ने आते जल सा लगाया सदा चील मुवी आया चंद मुख मेहमान सी।
1: So those driving right now, आपको कहना चाहते हैं बहुत हार्श फोकस इन द रोड एंड दिस वन इज आफ्टर गुनाज एंड नवीन आल्सो ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती दीपा मंगर सुंदर जो अपने पति के नाम करना चाहते हैं डेडिकेशन सूरज सुंदर और बेबी सॉन्ग है कृष्णा सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन आप दें मनुष्मा एंड कीप ऑन एंजॉयिंग यही तो हम चाहते हैं कि आपके आफ्टरनून और भी रंगीन बने।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: आरएम2
2: रेडियो मस्ती

कितने सारे लोग अभी वॉक पर जा रहे हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में, बस हुडी के साथ टैंकर और चल पड़े हैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर पूनम के बेटे का जन्मदिन है, बेस्ट विशेष फ्रॉम पापा जय सिंह दादा है एंड माँ सिटीना एंड नेक्स्ट सॉन्ग गोज़ टू अंशी अश्नी एक्चुअली एंड रेखा सुरेखा एंड मदर फैमिली के लिए भी।

0: कब द नेक्स्ट वन स्पेशली प्लेइंग फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू आवर इनटू रेडियो मस्ती जो इस आफ्टरनून में काम कर रहे हैं बस थोड़ा सा वो टाइम बाकी है और 6 बजे निकल पड़ेंगे घर के लिए
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती
0: ध्यान से रास्ते पर गाड़ी चलाइएगा ओके वी आर हियर टू हैव अ वंडरफुल टाइम विद यू

0: याद आ गया। वैसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। इस आखिरी गाने के बाद हम समाचारों की ओर पढ़ेंगे। देन आई एम गोना मीट यू इन द आफ्टर यू नो द समाचार 6:30 के बाद। ओके भी देयर कहीं जाइएगा मत। ओके हैव फन, एंजॉय कीजिएगा, ड्राइव सेफ विद अस हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: नमस्कार आदाब, ठीक 6 बजे हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मुर्शिद के ज्यादा कमजोर परिवारों को किस तरह पहचाना जाए, सोशल रजिस्टर में एक सुधार लाया जाएगा। समाज सुरक्षा मंत्रालय के तहत योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है। करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई, जिसके जरिए पानी के गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम उठाए गए। ओसबेल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में पहली सर्जरी कामयाबी के साथ की गई। एक भाई ने अपने किडनी देकर अपनी बहन की जान बचाई। इस ऑपरेशन में दोनों मुर्शन और विदेशी डॉक्टरों की महारत रही है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत मुर्शिद में कीटनाशकों के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू। हुकूमत अपने साझेदारों को एकत्र कर रही है। और भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू। इसके पीछे वजह ये है, स्थानीय जरूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखना चाहिए। नमस्कार आदाब, इस बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मुर्शिद के ज़्यादा कमज़ोर परिवारों को किस तरह पहचाना जा सकता है, इनके लिए एक सोशल रजिस्टर है और अब इस रजिस्टर में सुधार लाया जा रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है ताकि ये परिवार सुविधाओं से लाभ उठा सकें और अपनी ज़िंदगी सहल तरीके से गुजार सके। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण पेश है।
1: गिरे हुए पर्दों के पीछे बिना सच जाने फैसला सुना देने वाले नजरों से दूर ऐसे परिवार भी हैं जो खामोशी में बेहद कठिन संघर्ष लड़ रहे हैं। सफिनाज और सुल्तान 7 बच्चों के माता पिता हैं। पहले सफिनाज रोटियां बेचती थी और सुल्तान टैक्सी चालक थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन सम्मानजनक। फिर एक सड़क दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज सुल्तान काम करने में असमर्थ हैं, वहीं सफिनाज अपने कमजोर लेकिन मजबूत इरादों वाले कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं। पति, बच्चे और आर्थिक व मानसिक दबाव से भरी जिंदगी।
2: Quand nous payons qu'elles ont fait, là, si nous avons des moyens, c'est financier, là, nous passons nos femmes au débrouillé. Mon contrôle, c'est pas une société, un des gens qui nous viennent aider nous.
1: सुल्तान की विकलांगता पेंशन डॉक्टरों के फैसलों के अनुसार कभी मिलती है कभी रुक जाती है। जीवन यापन और परिवार चलाने के लिए इस दंपत्ति ने सामाजिक रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया है।
3: La madame a fait application. Il trouvait qu'il nous capable nous bénéficier ça nous tombe de NEF.
1: हर महीने नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक अधिकारी उनके घर पहुंचता है निगरानी और सहायता के लिए।
4: Nous discutons avec eux, nous causons avec eux, nous travaillons ensemble avec sa la famille là. Quand nous réussis, bisanger sa confiance à la famille là. Après sa confiance là. Nous essayons d'amener sa famille vers un niveau un petit peu plus meilleur pour qu'ils soient capables de sortir des problèmes.
1: सोशल रजिस्टर के पीछे एक पूरी व्यवस्था और निर्धारित मापदंड है जो यह तय करते हैं कि कौन सहायता पाने के योग्य हैं।
5: Critère d'éligibilité, nous avons un seuil de revenu premièrement qui est bien respecté. Pour une personne, c'est environ 3500 roupies qui capable à jusqu'à 14650 roupies pour une famille de 3 adultes, 3 enfants.
1: इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 7000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8,50,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। सोशल रजिस्टर के तहत लाभार्थियों के साथ किया गया अनुबंध 2 वर्षों के लिए होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल गरीबी हमेशा दिखाई नहीं देती, कई बार वह 4 दीवारों के भीतर बंद दरवाजों के पीछे खामोशी में जी जाती है।
0: विवरण अशिता रघु का रहा। 3 सालों से हर हफ्ता 3 बार

0: लिजिस कर रही एक 16 साल की जवान को नई जिंदगी मिल गई। उसके बड़े भाई ने उसे एक किडनी देकर उसकी जान बचाई। मुर्शन और विदेशी डॉक्टरों की महारत की बदौलत ये सर्जरी हो पाई है। आज बेहतरीन स्थिति में रिनल ट्रांसप्लांट किया जा सका। रोजबेल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में ये पहली बार है ये सर्जरी की गई जो कामयाब रही। और अन्य खबरों में, करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई। इसके अफसरों ने पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाए हैं। गिजवी में अनुसंधानकर्ताओं और इतिहासकारों ने एक सत्र में हिस्सा लिया। इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने ख्याल पेश किए। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इतिहास, विरासत और भारत से आए गिरमित या मजदूरों की कहानी पर जोर दिया गया। दैविक राजकुमार, अशिता रघु।
1: 1834 में भारत से मॉरिशस समय पहले गिरमिटिया मजदूरों का आगमन हुआ था। कुल मिलाकर भारत से हुए गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवासन में लगभग 21 लाख लोग शामिल थे, जिन्हें विभिन्न देशों में भेजा गया था। आज भी इस प्रवासन से जुड़ी शोध और अध्ययन का कार्य लगातार जारी है। करीब 5 लाख गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस आए थे। इससे मॉरिशस उन देशों में से एक बन गया है जहां सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर आए थे। उन्हीं मजदूरों की तरह कई रेनियन टापू, फिजी, गियाना इत्यादि देशों में भेजे गए थे। अतः इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट में जिन समुद्री रास्तों को तय करते हुए वे कहां कहां गए और बसे, इन सब की जानकारी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। हम विभिन्न देशों में बसे डायस्पोरा के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे इस डिजिटल डेटाबेस को सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे शोधकर्ता इन जानकारियों तक पहुंच पाएंगे। इस तरह जो लोग अपनी पुरखों का पता लगाना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी। सरकार गिरमिटिया मजदूरों पर शोध के लिए इलाकाई स्तर पर एक उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार आप्रवासी घाट को कार्य जारी रखने में मदद दे रही है, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसे शोध केंद्र का होना आवश्यक है। इसीलिए हम मॉरिशस को आगे ला रहे हैं। मॉरिशस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास गिरमिटिया मजदूरों की 1,75,000 से अधिक पहचान तस्वीरों का एक अनमोल संग्रह सुरक्षित रूप से नेशनल आर्काइव्स में संरक्षित है।
0: मॉरिशस में कीटनाशकों का जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करना अधिकारी मुख्तलिफ साझेदारों के साथ मिलकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हिफाजत करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत इस परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि स्थानीय ज़रूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखा जा रहा है। इसके अलावा दाम पर असर से बचने के लिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया। दूरदर्शन की रिपोर्ट पर आस्था गोविंद चितावन का विवरण।
2: भारतीय सरकार ने कच्ची और सफ़ेद चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है या अगले आदेश तक ये रोक जारी रह सकती है। सरकार के अनुसार देश में चीनी उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। इस वर्ष सरकार को उम्मीद थी कि उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहेगा और इसी आधार पर 15,90,000 टन चीनी निर्यात की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन अब प्रमुख गन्ना उत्पादक सेक्टरों में उत्पादन घटने के संकेत मिले हैं, जिसके कारण लगातार दूसरे वर्ष चीनी उत्पादन घरेलू खपत से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पीछे हटने से ब्राजील और थाईलैंड जैसे देश एशिया और अफ्रीका के बाजारों में अपनी आपूर्ति बढ़ा सकते हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के औपचारिक दौरे पर गए हुए हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया और उनकी शान में होनागढ़ यानी मिलिट्री होनागढ़ की भी कतार लगी हुई थी।

0: सब ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे।
1: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य राजकीय स्वागत किया गया। सैन्य सम्मान, लाल कालीन स्वागत और ऐतिहासिक टेम्पल ऑफ हेवन की संयुक्त यात्रा इस मुलाकात के विशेष कूटनीतिक महत्व को दर्शा रही थी। करीब दो घंटे तक चली वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने बातचीत को सकारात्मक बताया, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के बीच रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि ताइवान का मुद्दा वार्ता के सबसे संवेदनशील विषयों में रहा। शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान चीन अमेरिकी संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया तो ये खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चाएं हुई। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए। बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग भी प्रमुख विषयों में शामिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क, टिम कुक और अन्य अमेरिकी उद्योगपति चीन में व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके साथ आए हैं। विश्लेषकों के अनुसार ये शिखर वार्ता बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनावों के बीच दोनों महाशक्तियों के संबंधों को स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण कोशिश मानी जा रही है।
0: अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया। कई हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे प्रस्तावित किए थे, लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है। स्थानीय स्तर पर मॉरिशस के बच्चों और नौजवानों में ड्रग नोशी चिंताएं बढ़ा रही हैं। उनको इस बुराई के बारे में आगाह कराने के लिए ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने वीडियो बनाने का मुकाबला जारी किया। एमएफडीसी और दूसरे साझेदारों के सहयोग से 15 से 18 साल के नौजवानों को 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा। कैजिनो एम्प्लॉयज यूनियन ने क्यूपिप में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। मकसद मॉरिशस में कैजिनो को लेकर राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री की घोषणा पर टिप्पणी करना रहा। गियों बेल के एक बंगले में रूजबेल की आजसूने कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकीन को जब्त किया। कल इस बंगले की तलाशी ली गई, जिसके मालकिन जयंती देवी झगरू हैं। वो फिनिक्स से हैं और पुर्तगाल में रहती हैं। उसकी उम्र 41 साल की है। अभी वो मॉरिशस में है और उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया है। एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। कोकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जा रही है।

आम हालत आज रात से कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: पियालावाल सेंट क्वा में 67 साल के 67 years old कुंवारी चंद्र सासी हवलदार जो सासी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर पियालावाल सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश में 41 साल की 41 years old श्रीमती जया बिसेसो पैदाइशी नाम चिकोरे जो मीनाक्षी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पति विशाम बिसेसो के घर ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। रॉयल रोड पेलखन सेबास्टोपुल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जगोरु जो जॉन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलखन सेबास्टोपुल से उठाई गई। एवेन्यू मोंगिए बॉम्बू में 75 साल के 75 years old श्री ज्ञानदत्त बिहारी जो ओंगले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दिन के 10 बजे इनके घर एवेन्यू मोंगी बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो 10 AM। लालमाटी में 82 साल के 82 years old श्री शिवनंदन बंजन जो शिव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर बंजन लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडिमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Mastery.

0: सिटी रफ्तार वाइब्स में थोड़ी सी रोमांटिक गानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप तो जानते हैं कि 6:30 बजे के बाद हम तो आ जाते हैं आपके दिल की दास्तान बयां करने के लिए। रफ्तार वाइब में इस आखिरी आवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
3: रेडियो मस्ती।

0: 7 PM बस कुछ सुनहरे गाने और सुनहरे पल के साथ यूं ही अपने ड्राइव को एंजॉय कीजिएगा. ड्राइव सेफ. वी आर हियर टू कीप योर कंपनी विद द बेस्ट.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
3: रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: अनुविशा के आवाज में सेकत, गोबलो के आवाज में फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जा रही परदेसी। मैं तो पंथ निहार रही हूँ। आपका साथ जब होता है तो दिल ही खुश हो जाता है। वैसे हमारे और आपके साथ का बस 10 मिनट बाकी। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय कीजिएगा अपनी रफ्तार वाइब्स ऑन आर एंड टू रेडियो मस्ती।

0: दिस इज अवर राघव चैतन्य एंड जोनिता गांधी फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जाने का समय हो चला है, अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए। वापस हमारी मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग को 9 से 12 बजे, वहां पर भी अलग सा सिलेक्शन आपके लिए चुनकर लाएंगे।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
0: इसे हमारे बाद लेकर आ रही है इवनिंग लाउंज हमारी प्यारी दिव्या, उनका साथ निभाइएगा भरपूर, प्यार देते रहिएगा। तो बाय।

0: जी हाँ दोस्तों, पहली बार के लिए जब भी प्यार होता है तो दिल थोड़ा और ज़ोर से धड़क जाता है और प्यार थोड़ा और भी आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ मुलाकात करने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये प्यार का एहसास तो ऐसे ही होना चाहिए और इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचते हैं, क्योंकि प्यार को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद गुड म्यूज़िक। कुछ रोमांटिक गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा और प्यार हो जाएगा, इतनी गारंटी तो हम ज़रूर देते हैं। चलिए, 7:07 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? वैसे दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। सो जहां से भी साथ रहे होंगे, थैंक यू सो मच दिल से साथ देने के लिए। कुछ लोग मॉरिशस में हैं तो कुछ लोग सात समुद्र पार हैं। हाँ, मुझे पता है कि वक्त का तकाजा कभी कभी थोड़ा टाइट हो जाता है और वक्त सेम टू सेम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा हम कहते हैं ना कि दिल के जज्बात हमेशा सेम ही हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू गुड म्यूज़िक, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद द नंबर वन रेडियो स्टेशन, दैट इज़ रेडियो मस्ती। चलिए, आपकी मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294। और अमेजिंग बात, एज यूजल हमेशा जब आते हैं तो हम यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं टू कीप ऑन कॉलिंग। यस, अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, दिन भर की थकान को शायद आप थोड़ा दूर करना चाहेंगे, तो प्लीज आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 4028235-4295 पर आप हमें याद कर सकते हैं। लाइन खुली हुई है तो जरूर आप हमें याद करिएगा। आपसे बात करके बहुत ही खुशी होगी हमें। कुछ आपस की दिल के जज्बात को हम शेयर करते रहेंगे टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: वैसे कहा जाता है कि कभी कभी एक लम्हा काफ़ी होता है किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए, किसी को परखने के लिए, और कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और इस लम्हे को हम पकड़ नहीं पाते हैं और उस शख्स को हम पहचान नहीं पाते हैं। जिनको आप एक पल में पहचान जाए वो आपके अपने हैं, और जिनको आप ज़िंदगी भर पहचान नहीं पाते हैं वो तो बेगाने हैं ही। और आपको तो हम रोज़ रोज़ मुलाकात करने आते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग पहचान गए हैं कि मन में बहुत सारा प्यार ही लेकर हम आप लोगों से मिलने आते हैं।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: वैसे आप उदास होते हैं तो हम थोड़े से और भी उदास हो जाते हैं और मन थोड़ा बेचैन हो जाता है आपको ऐसे मूड में देखते हुए। इसीलिए तो आपके मन को बहलाने के लिए हम यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने लेकर आते हैं, रोमांटिक गाने लेकर आते हैं आपके मूड को थोड़ा सा और खूबसूरत और थोड़ा हल्का करने के लिए आपके मन को। और ये गाना, इस गाने की फरमाइश की है शीला जी अपने मेबर्ग से और बहुत ही दुखी साउंड कर रही थी एंड इट्स सो सैड टू नो कि आप अपने बेटे को बहुत ही याद कर रहे हैं, वो आपके बीच नहीं है और आप ये गाना सुनना चाहते हैं। जिए तो जिए कैसे, कभी आंखें नम हो जाती हैं शीला जी, लेकिन क्या करें, जिंदगी की यही दस्तूर है, किसी को आना है, किसी को जाना है और उनके बिना हमें रहना है। और कभी कभी जब कोई चला जाता है ना तो हमें एक खुशी का कारण दे जाते हैं और वो हैं उनकी यादें, और यादों के सहारे आप जिंदगी को काट ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग शीला जी, और आपको बहुत बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। एक्चुअली शी वॉन्टेड टू बी ऑन एयर लेकिन बात नहीं कर पा रही है एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सो शीला जी, ये गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू टू ऑल योर

0: वेल ये खूबसूरत सा गाना इट वाज रिक्वेस्टेड बाय शीला जी ऑल द वे फ्रॉम मेबर्ग. शीला जी कभी कभी जिंदगी में ऑल वी कैन डू इज कीप ऑन प्रेइंग, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करें कि हमें स्ट्रांग बनाए सभी हालातों से, सभी मुश्किलों से जूझने के लिए. चलिए शीला जी, आप हमारी बस बेस्ट विशेज में हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं. चलिए अभी के लिए मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक और कॉलर हैं हमारे बीच, चलिए उनसे हम बात करेंगे. हेलो जी.
1: हेलो दिव्या जी.
0: नमस्ते जी. गिरीश जी कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. आपसे बात करके इतना अच्छा वाइब मिला मुझे, और एक्चुअली लेट मी टेल ऑल द लिसनर्स कि ऑफ एयर आपसे बात हो रही थी. एक्चुअली मैंने गिरीश जी से पूछा कि आपका खाना हो गया, तो उन्होंने बस कहा कि हाँ हो गया, मैं तो बस गातो खा रहा हूँ. तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ. मतलब डिनर ले लेने के बाद वी ऑलवेज नीड समथिंग टू कीप ऑन मंचिंग, विच इज़ रियली नॉट हेल्दी, लेकिन हम करते हैं.
1: So,
0: so Girish ji, tell me, all is fine from your side?
1: अभी तो कुछ थोड़ा दूस में तो कुछ तो ठंड है, कुछ.
0: कुछ तो ठंड है. और इस ठंड वाले मौसम में आप किसी को खास तौर से बस कोई खास पैगाम भेजना चाहेंगे कि उनके लिए कोई खास गाना या फिर कोई खास पैगाम?
1: मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी के पास जाएंगे तो आप
0: टेक द प्रिकॉशन. हाँ, खास तौर से कभी कभी नॉर्थ वाले वो जब निकलते हैं ना साउथ में, सेंट्रल प्लेटो में किसी को विजिट करने के लिए, तो स्पेशली आपके पास बच्चे हैं तो उनका पूरा पूरा ख्याल रखें. चलिए गिरीश जी, आप हमें बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है.
1: तो इस ठंड का मौसम है तो अभी मैंने शादी नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम. मैं रात को आऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं सैर कराऊंगा, मैं किसी को सैर कराएंगे तो
0: कोई बात नहीं. वी नीड टू ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ. और वैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, वी नीड ऑलवेज ऑलवेज टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव कंक्लूजन इन दैट. ठीक है.
1: वैसे कई बार मैंने प्रोग्राम आपसे किया है एमबीसी में, तो
0: हाँ, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट को ही पहचानेगा.
1: हाँ, तो वो एमबीसी का जो चेयर है ना, वो आपके आपने बाग मेरे पास ही रखा था.
0: मैं तो भूल जाती हूँ. चलिए गिरीश जी, आपसे बात करके बहुत बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद किया, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: सो ये थे गिरीश जी, एंड चलिए बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और अभी के लिए वो गाने के मूड में नहीं है, बल्कि गाने सुनने के मूड में हैं, और बहुत ही प्यार से उन्होंने गाने की फरमाइश की फ्रॉम द मूवी दुल्हन हम ले जाएंगे. तो चलिए साथ मिलकर इस गाने को सुनते हैं. इवनिंग लाउंज.

0: वेल शाम के 7:30 बज चुके हैं. टू ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको बना पीछे शुभाहार. वैसे लेट डिनर लेना बिल्कुल अनहेल्दी होता है, मतलब आपके शरीर को आपके खाने को पचने का टाइम देना चाहिए. एंड इसके हिसाब से देर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न कि क्यों पहले लोग जल्दी डिनर ले लेते थे. तो चलिए अभी के लिए आपको बना पीछे शुभाहार इफ़ यू हैविंग योर मील राइट नाउ. एंड अभी के लिए कोई हैं जो हमसे बात करने के लिए एकदम तैयार हैं और कह रही है कि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ एंड फाइनली लाइन लग गई और कह रही थी कि दिव्या जी आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है. थैंक यू सो मच राधा जी, नमस्ते आपको, कैसी हैं आप?
1: आई एम

0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और बताइए आपका डिनर हो गया?
1: नहीं अभी नहीं, अभी तो साफ है, आपकी आवाज सुन सुन के एनर्जी आते हैं, काम पर जाती हूँ तो पकाती हूँ और डांस भी करती हूँ और आपकी आवाज भी सुनती हूँ।
0: That's really sweet, राधा जी। देखो ये आप जो आपने जो अभी बोला ना कि मेरी आवाज सुनते सुनते आप खाना बनाते हैं, तो इसका मतलब खाने में मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो रोज आपको मेरे तक खाना पार्सल कराना है।
1: Why not? आपके लिए एक चम्मच डालूंगी, एक चम्मच मैं खाऊंगी।
0: सो स्वीट, आप बहुत ही स्वीट है, थैंक यू सो मच। तो राधा जी आप मुझे कुछ अच्छी वाली खबर सुना रही थी ऑफ एयर कि 7 साल के बाद आपका बेटा मॉरिशस वापस आया है, तो टेल अस मोर अबाउट इट, हाउ यू आर फीलिंग।
1: टुमारो उसका बर्थडे है, 28 हो रहा है, सॉरी 28। मैं खास कर शिवाजी से कहूंगी, वो जहाँ भी रहेंगे शिवा उसका आशीर्वाद, उसका प्यार हमें सब।
0: ओ आप इमोशनल हो गई राधा जी, क्या हुआ? आई नो आई नो, माँ का दिल ऐसा ही होता है। देखिए आप ऑन एयर मुझे रुलाएंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब हमारे ऑडियंस हमारे लिसनर्स आंसू बहाते हैं, लेकिन जब तक आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं तब तक ठीक है, आप रो लेना।
1: ठीक है, मैं खास कर उसकी पापा जानेस की तरफ से, उसकी बहन याशना और उसकी जीजाजी जी और उसकी छोटी सी भतीजी है जो उसे बहुत प्यार करती है, आराया नाम है।
0: ओह दैट्स सो स्वीट राधा जी, आई कैन फील कि
1: मामा से लगाव है।
0: बिल्कुल, और जब आप बात करें ना आपके आपके आपकी आवाज में इतना प्यार झलक रहा है, मतलब माँ की ममता ऐसी ही होती है, और बहुत ही जल्द मदर्स डे भी है, तो आई गेस इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू कि 7 साल के बाद आप अपने बेटे के साथ मातृ दिवस सेलिब्रेट करेंगे, दैट्स इज अ रियली बिग थिंग।
1: थैंक यू
0: सो मच राधा जी,
1: आपकी टीम की जो भी है नीतूषा ने है वो भी बहुत प्यार से बात करती है।
0: बिल्कुल, हमारी प्यारी नीतूषा।
1: कई बार उससे बात किया हूँ मैंने, वो बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है आपकी तरह।
0: थैंक यू सो मच राधा जी,
1: मेरे बेटे को जहाँ भी रहेंगे वो एक फूल की तरह रहे,
0: बिल्कुल
1: कामयाब चांद उगर रहे। एक खास कर एक गाना उसके लिए, कभी खुशी कभी गम के लिए एक गाना।
0: कभी खुशी कभी गम कौन सा वाला? मेरी सांसों में। ओके ये तो माँ वाला गाना ही है।
1: बेटा कर वेट कर रहे थे।
0: चलिए ये गाना,
1: 7 बरस हमने कैसे बिताए हम नहीं बता सकते हैं आपको।
0: आई कैन टोटली रिलेट।
1: प्यार से बहुत से पूजा करके उसके लिए इंतजार किया।
0: चलिए 7 साल के बाद आपका बेटा सुरक्षित वापस आया है, अभी आप पूरा पूरा फायदा उठाइए।
1: कल सुबह मुझे लाइन मिलेगा या नहीं मैं ट्राई करूंगी फिर भी, लेकिन
0: बिल्कुल
1: आपकी आवाज आ गई, आपकी लाइन मिल गई, मेरा खुश नसीब है।
0: थैंक यू सो मच राधा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय
1: बाय।
0: तो दोस्तों चलिए जिंदगी में कभी खुशी कभी गम तो आते ही हैं, और राधा जी के लिए खास तौर से और उनके बेटे के लिए ये अगला गाना।
2: इवनिंग लाउंज,
3: इवनिंग लाउंज,
4: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इनका सामना हमें डर कर नहीं बल्कि डट कर करना है, हमेशा याद रखिएगा। वेल यू आर कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है चिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज। आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और कभी कभी एक कॉलर से बात हो रही है तो 2-3 कॉलर्स और फ़ोन कर रहे हैं, और अनलकीली आपके फ़ोन कॉल्स तो एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं। बट आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और चलिए भी के लिए आशा जी हैं ऑफ तेहूज, रोज़ रोज़ फ़ोन करती हैं और रोज़ उनसे बात करके ऐसा लगता है कि प्यार थोड़ा सा और बढ़ गया है। और अफेयर उनसे बात हो रही थी तो आशा जी यही कह रही थी कि पता नहीं आप लोगों से क्या कनेक्शन है कि बस बिना गाना मांगे रह ही नहीं पाती हूँ। हेलो आशा जी, नमस्ते आपको।
1: हेलो,
0: यस नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं सुनीता हूँ,
0: तेहूज
1: से अच्छी हूँ।
0: ओके, हाँ सुनीता जी, अब तेहूज कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बताइए आज आप कौन से गाने का सिलेक्शन आप माइंड में लेकर आए हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे रोटी कपड़ा और मकान का गाना सुनना है, हो सके तो मिलेगा?
0: बिल्कुल, आप बताइए कौन सा गाना।
1: मैं ना भूलूंगी।
0: वाह क्या बात है, रोटी कपड़ा और मकान। आप बताइए किसके लिए डेडिकेशन है
1: ये गाना? आप लोगों के लिए सबसे पहले, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे बातें करते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: हम काम करते हैं तो बहुत सुहाव मिलते हैं गाने सुनकर, सभी काम हाल जल्दी से जल्दी हो जाती है।
0: सो स्वीट।
1: अकेले रहते हैं तो महसूस नहीं मालूम होता कि हम अकेले।
0: नहीं, ये आप बिल्कुल मत कहिएगा, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर कदम पे रेडियो मस्ती आपके साथ है।
1: जी हाँ, यही तो कहता हूँ ना, ये रेडियो मस्ती हमारे दोस्त बन गया है, यानी कि हमारी एक फैमिली सा जैसा बन गया है।
0: दैट्स रियली स्वीट। तो चलिए सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: आप लोगों के लिए और गणेशा के लिए, भाई धर्म के लिए और पूरी फैमिली के लिए, कौनक परिवार के लिए, कलेचिति परिवार के लिए, सबके लिए, जितना कोई सुन रहे सभी के लिए ये गाना मांगना चाहती हूँ।
0: ओके सुनीता जी, थैंक यू सो मच फोन करने के लिए। चलिए ये अगला गाना स्पेशली आपके नाम।
2: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Musti.

0: हम तो कभी नहीं भूलेंगे और इतनी गारंटी तो ज़रूर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और आप भी कभी मत भूलना। चलिए, इट्स ऑलरेडी 7:53 एंड एक और कॉलर हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं और कह रही हैं कि पहली बार के लिए उनको लाइन मिली है, तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टॉक टू हर ऑन एयर। हेलो अनीता जी, कैसी हैं आप?
1: जी हाँ, हम ठीक हैं, और आप कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक। आपने खाना खा लिया?
1: जी हाँ, हमने खाना खा लिया।
0: वेरी गुड।
1: और
0: मैंने तो अर्ली डिनर ले लिया है। और आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है पहली बार के लिए बात करके?
1: अच्छी लगी।
0: कैसा लगता है? अच्छा लगता है,
1: लगता है। बार बार हम आपको सुनती है और मैसेज भेजती है, लेकिन पहली बार बात कर रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, हम फोन करती है लेकिन लाइन नहीं मिलती। कोई बात नहीं,
0: कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
1: हाँ, तो एक गाना चला दीजिएगा।
0: बिल्कुल,
1: यादों की बारात। छुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: बिल्कुल। और ये गाना किसके लिए?
1: हमारे सारी फ्रेंड एंड परिवार के लिए, आपके लिए खासकर, आपके टीम के लिए।
0: हाँ,
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनीता जी, बाय। थैंक यू सो मच। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें, हमारे कॉलर्स जो हैं काफ़ी शर्मा जाते हैं बात करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक और कॉलर हैं जो शायद हमसे बात करना चाहते हैं, और चलिए उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल
2: आप
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप एक बार फिर से अपना नाम हमें याद दिला दीजिए प्लीज।
2: ओह माय गॉड, राजेश,
0: मिस्टर राजेश। राजेश खन्ना तो नहीं है ना?
2: ठीक है, सब ठीक, कुशल मंगल है। आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और बताइए,
2: आवाज सुना था मैंने, नेक्स्ट टाइम आपने जब बात किया था मैं आपकी आवाज कब्जे कर दिया। आप दिव्या है ना?
0: बिल्कुल
2: ठीक है जी। मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ।
0: बताइए।
2: फिल्म है दाग।
0: हाँ,
2: राजेश खन्ना की फिल्म है, समीर ठाकुर।
0: ओके, और उसमें कौन सा गाना है?
2: मेरे दिल में आग।
0: ओ हो, तू कहे
2: तो मैं बता दूँ।
0: बताइए राजेश जी, हम तो बैठे ही हैं दिल का हाल सुनने और सुनाने के लिए। तो चलिए राजेश जी, आप से बात करके ना जो पॉजिटिव वाइब्स होता है वो मिल रहा है। सो इट्स वेरी वेरी नाइस टू नो कि
2: आप उस रात, आप हर रोज नहीं बोलते हैं ना। नेक्स्ट टाइम मैं बचा था आपसे, मैंने आपका नाम नहीं जाना। मैंने पूछा आपसे आपका नाम।
0: बिल्कुल।
2: आपने बोला कि मैं दिव्या हूँ, तो मैंने वो अपने दिमाग में रख लिया।
0: हाँ,
2: आज बोल रही है।

0: तो आवाज में सुना तो मैं ये दिव्या जी है।
1: आपने पहचान लिया, देखा यही है हमारे लिसनर्स, एक बार आप सुनो तो आप आवाज को कैप्चर कर लेते हैं और हम तो आपके दिल को दिल पे कब्जा करना चाहते हैं एंड इसीलिए तो हम बार बार यहाँ पर चले आते हैं और बस जो आप थोड़ा बहुत प्यार देते हैं ना उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: ऑफकोर्स वाइनर, आप तो प्यारे काबिल हैं यार। सभी आपके जो जितने हंसनी योग नीतिशा जाने क्या क्या है,
1: सब लोग हमारी पूरी टीम
0: एमबीसी वाले ने कितनी परिया रखे हैं वहाँ।
1: नॉट फेयर, यहाँ पर जेंटलमैन भी काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा। चलिए राजेश जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपका गाना हम बाद में जरूर चलाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे, हाँ जी हाँ, चलिए थैंक यू बाय। चलिए, कुछ लोग इतने शर्मीले होते हैं, ऑन एयर ही नहीं आना चाहते हैं, और एक हमारे राजेश साहब हैं, बहुत ही फिल्मी टाइप हैं और उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। चलिए भी के लिए अनीता जी का ये गाना हम ज़रूर चलाएंगे और इसके बाद राजेश जी का गाना बाद में हम चलाएंगे ज़रूर। फिलहाल के लिए वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना डेडिकेटेड टू अनीता जी।
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
2: Radio Musti.

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा। ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

That was such a beautiful gana, Tera Milna, Pal Do Pal Ka. Bas, Pal Do Pal Ka Saath Kabhi Rehta Hai Kisi Ke Saath. And that becomes a lesson for life. Aur kuch log zindagi bhar saath nibhane aate hain. And they become the reason of living. 8:10 ho chuki hai. It's a Thursday evening. Aur aise mein hum aapka saath nibhane ke liye aa chuke hain. On the waves of Radio Masti, jahan par Divya ka saath hai till 9 PM. Waise bohut saare callers ne hume phone kiye in the first hour. एंड अभी हम एक बार फिर से आप लोगों से बात करना चाहेंगे ऑन 4028235 पर. हमारे कॉलर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिर से हमें फ़ोन कर सकते हैं. आपसे हम ज़रूर बात करने के लिए बेताब हैं और बेचैन हैं. ज़रूर आप बताइएगा कि किस तरीके से आप इस इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं. खाना वाना हो गया है, कल के लिए काम पर जाना है और आप खुद को तैयार कर रही हैं मेंटली एंड फिजिकली. हाँ, काम पर जाने के लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ता है. फिलहाल के लिए जो आपके परिवार वाले हैं उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा. एंड आई नो कि कभी कभी हम टाइम पे खाना खाते हैं और ऐसे में खाना खा लेने के बाद आप ड्राउजी फील करते हैं और आपको लगता है कि इतनी थकान है कि हमसे बात भी नहीं किया जाएगा. लेकिन आप एक लफ्ज़ कह के तो देखिए आपके परिवार वाले कितने खुश हो जाएंगे. एंड इसी से ही प्यार की शुरुआत होती है और इसी से ही प्यार को बढ़ावा दिया जाता है. कम्युनिकेशन इज़ द की. एंड चलिए बात करते रहिएगा. और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम वर्क प्लेस में

0: ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, और घर आते ही ऐसा लगता है कि अभी इतनी थकान है कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बस आप अपने एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए और आप देखें कि आपका घर कितना और भी लाइवली होता है और आपके घर में प्यार और भी खिल के आएगा। चलिए दिव्या का साथ है और एक बार फिर से रिक्वेस्टिंग द कॉलर्स, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028235
1: Evening Lounge. Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.

आपके दिल में भी क्या है आप जरूर हमें बताइएगा ऑन 5499 1294। आपके मैसेजेस की ओर हम जरूर बढ़ेंगे क्योंकि आई नो कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड योर डेडिकेशंस। वेल 8:21 हो चुके हैं एंड चलिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अभी भी लाइन खुली हुई है। फर्स्ट आवर में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए एंड चलिए अगर आप थोड़े से शर्मा रहे हैं तो आप हमसे ऑफ एयर ही सही बात कर सकते हैं और अपने मनपसंद गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर गाना शो के लिए अच्छा होता है फिट होता है तो ज़रूर हम उनको इस शो के दौरान फिट इन करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए वी हैव उर्वशी आओ तो आप हेल इस से रिक्वेस्टिंग फॉर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर आउट ऑफ फैमिली एंड फॉर द होल रेडियो मस्ती टीम। थैंक यू सो मच। हेलो गुड इवनिंग। वॉन्ट टू डेडिकेट अ फ्रेंडशिप वाला

0: Ghana for a friend. Rina Pulwan, we are so lucky. God bless her more and more. From besties. Oh, बस नाम ही incomplete रह चुका है. और इस incomplete message को अगर आप complete करना चाहते हैं तो all you have to do is do send your message once again on 5499-1294. आप हमें WhatsApp के जरिए याद कर सकते हैं. चलिए यहाँ पर बेटे नितिश के लिए अगला गाना जाएगा from मीरा रामदिकल ऑफ मोताई ब्लॉन्श. साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है. आतिश, वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग सूरज की गर्मी से छाया फॉर ऑल 90s पीपल. तो चलिए यहाँ पर अगला गाना गुजाउट स्पेशली फॉर यू आतिश. एंड यहाँ पर एक और मैसेज आया है. कैन यू प्लीज प्ले मेरे लिए जिंदगी तेरे बगैर कुछ नहीं फ्रॉम फिल्म मेरा जवाब. देखिए काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ चुके हैं और बार बार इसको ज़रूर हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड अगर हमें टाइम मिला तो, अगर टाइम नहीं मिला तो विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम. चलिए फिलहाल के लिए वी हैव संगर ऑफ फ्रांस. हे संगर, साथ देने के लिए थैंक यू. एंड चलिए आप बताइए वहाँ का मौसम कैसा है. भाई संगर का बस हमेशा एक ही मैसेज आता है और एक मैसेज के बाद आप एक और मैसेज भेज सकते हैं ये बताने के लिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर, एंड मौसम कैसा है, ये सब कुछ जानने के लिए हम एकदम उत्सुक हो रही है. तो चलिए एक बार फिर से आप हमसे बात कर सकते हैं 4028235-402-8035.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti. RM2. Radio Musti.

0: वेल, 8:40 हो चुके हैं और चलिए यहाँ पर रेशमा जी का फ़ोन आया था और थोड़ी हिचकिचा रही हैं बात करने के लिए ऑन एयर, और कहती हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऑफ एयर ही बात करूँगी। और उन्होंने एक गाना मांगा है और ये अगला गाना जाएगा स्पेशली आपके पति के लिए विनय, और साथ में आपके दो बेटे हैं, एक बेटी हैं, उनके लिए प्यारा सा पैगाम आप यही भेजना चाहते हैं कि आप उनसे दिलो जान से बढ़कर भी प्यार करते हैं एंड You just want to see them happy and always keep smiling and मुझे लगता है कि उनके जीने की वजह और हंसने की वजह बस आप ही हैं। Of course, a woman is the heartbeat of the house और बस आप अपने प्यार की सुगंध से प्यार को फैलाते रहिए। फिलहाल के लिए खामोशी का गाना आपने रिक्वेस्ट किया है तो रेशमा जी चलिए ये गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर लवली हस्बैंड।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti. ऑलरेडी एंड चलिए अरिजीत सिंह पलक मुचल की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना इज वन ऑफ माई फेवरेट्स और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस गाने को बहुत ही पसंद करेंगे। एंड चलिए आपके मैसेजेस तो हम तक ज़रूर पहुँचे और वैसे बहुत सारे लोगों ने भी फ़ोन किए, तो चलिए ये गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त शायद रिलैक्स कर रहे होंगे और बस हमारे गीतों का लुत्फ उठा रहे होंगे।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल फ्रेंड्स, इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. आप लोगों ने बहुत ही प्यार से साथ दिया और

अ लवली इवनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. रात्रि के 12 बजे तक नीतू आपके साथ.

खुशी तब सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है जब इंसान हर छोटी सी खुशी को महसूस करना सीख लेता है। खुश रहना सिर्फ बड़े सपने पूरे होने का नाम नहीं, बल्कि सुबह की एक प्यारी सी चाय, किसी अपने की मुस्कान या शाम की ठंडी हवा में भी सुकून ढूंढ लेना है। जो लोग हर दिन को एक नए मौके की तरह जीते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही रोशनी होती है। जिंदगी का असली मजा तब है दोस्तों जब दिल हल्का हो, मन शांत हो और चेहरे पर मुस्कान हो।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Late Night Grooves,
2: RM2, Radio Musti।

वक्त भागना, टेंशन लेना और दूसरों से कंपेयर करना इंसान को अंदर से थका देता है। खुशी का असली राज है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना। कभी कभी बस थोड़ा रुक कर अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करना बहुत ही जरूरी है। बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी या फिर रेडियो मस्ती पर बजता एक प्यारा सा गाना दिल को भी खुश कर सकता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों में सुकून ढूंढ लेता है वही असली खुशी जी लेता है।

टॉकिंग अबाउट जिंदगी लाइफ जीवन, ये जो है ना, इसमें पैसे जरूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ही खुशी नहीं देते। असली खुशी मिलती है अपनों के साथ वक्त बिताने से, जैसे अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्यार बांटने से और दिल से जीने से। एक प्यारी सी फैमिली गैदरिंग, दोस्तों के साथ हंसी मजाक या किसी की मदद कर देना भी दिल को अजीब सा सुकून देता है। खुश रहने के लिए दिल का अमीर होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

कभी कभी इंसान खुद ही अपनी खुशियों का दुश्मन बन जाता है, है ना? हर बात को दिल पर लेना, पुरानी बातों को सोचकर उदास रहना एंड फ्यूचर की टेंशन लेना, भाई ये सब खुशी को धीरे धीरे कम कर देता है। अगर इंसान माफ करना और आगे बढ़ना सीख ले तो जिंदगी बहुत हल्की और सुंदर लगने लगती है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि मन में पॉजिटिविटी और उम्मीद बने रहे, समझे?

खुशी देते हैं उनकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। किसी उदास इंसान को हंसा देना, किसी को प्यार से समझाना या बस एक अच्छी सी बात कह देना भी किसी के दिन को खूबसूरत बना सकता है। खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। That's why हमेशा मुस्कान और पॉजिटिविटी बांटते रहना चाहिए।

0: हे लवली पीपल, थैंक यू सो मच. लेट नाइट ग्रूव्स में आप नींदों के हम सफर बने हुए हैं ऑलरेडी इन द सेकंड आवर. ऑलराइट, चलिए लाइफ के बारे में. जिंदगी खूबसूरत है ये तो हम सब जानते हैं. इसको आप और बेहतरीन बना सकते हैं इन प्यारे प्यारे गानों के साथ. वैसे हर दिन परफेक्ट नहीं होता, ये तो आप ही मानते हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है. कभी मौसम दिल को खुश कर देता है, कभी एक गाना यादगार लम्हे याद दिला देता है. खुशी उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के बीच भी रोशनी देखना जानते हैं. जिंदगी एक सफर है और इस सफर को हंसते हंसते जीना ही सबसे बड़ी कला है.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा.
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

खुश रहने के लिए क्या है बोलो यार, गाना तो आपने सुना ही होगा। तो खुश रहने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है अपने लिए वक्त निकालना। काफी लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड ये करने का वक्त नहीं मिलता, वो करने का वक्त नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। देखो भाई, वक्त ढूंढना पड़ता है। कभी अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाना, कभी शांति से बैठकर चाय पीना, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं दिल को सुकून देती हैं। हर वक्त दूसरों के लिए जीने के साथ साथ खुद के लिए भी जीना बहुत ही जरूरी है।

0: सच अ लवली गाना, और गानों के जरिए जिंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। हमारी तो यही कोशिश है। और जिंदगी की असली रिचनेस बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि खुशियों और यादों से मापी जाती है। जो लोग दिल से हंसते हैं, हर लम्हे को एंजॉय करते हैं और अपनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वही सच में अमीर होते हैं। एक सिंपल लाइफ भी बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर उसमें प्यार, सुकून एंड सकारात्मकता हो।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

खुशी जो है किसी दुकान में नहीं मिलती, वो हमारे अंदर है। आप उसको महसूस करो ना। जब इंसान अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करता है और हर दिन के लिए थैंकफुल रहता है, तब उसका दिल नेचुरली खुश रहने लगता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी अदा है जो जिंदगी को और भी प्यारा बना देती है।

हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो हर मुश्किल में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही असली जीतने वाले होते हैं। जिंदगी एक फिल्म की तरह है, कभी इमोशनल सीन, कभी कॉमेडी एंड कभी रोमांस। हर सीन को एंजॉय करना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।

A big thank you to you all, my dear listeners. और बस रात्रि के 9 बजे से हमारी हम सफर बने हुए हैं already in the last hour. तो बस कभी कभी एक अच्छा गाना भी दिल की उदासी को दूर कर देता है, जैसे कि अभी पता भी नहीं चला थर्ड आवर आ गया. म्यूजिक में एक अजीब सी हीलिंग पावर होती है. जब दिल हल्का करना हो तो अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो और खुद को लाइफ की टेंशन से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो. खुश रहना भी एक हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है.

हर वक्त दूसरों की बुराई और निगेटिविटी में लगे रहते हैं, वो कभी दिल से खुश नहीं रह पाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और अच्छी अच्छी बातों पर फोकस करना। जहाँ प्यार और पॉजिटिविटी होती है, वहाँ सुकून खुद चल

0: बहुत छोटी है दोस्त, इसलिए हर लम्हे को दिल से जीना चाहिए। कल किसने देखा है? आपने? मैंने? नो। इसलिए आज की खुशी को कल के दर्द में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो और हर दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह जियो।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2 रेडियो मस्ती।

खुश रहने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, बस वो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ लेना जानते हैं। कभी एक कप कॉफी, कभी एक सनसेट, कभी किसी अपने की आवाज, ये सब भी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। जो दिल से जीना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में रंगीन हो जाती है। सो माय डियर लिसनर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जाने का टाइम आ गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि खुशी किसी और के पास नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर इंसान अपने आप को हल्का रखे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखे और दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ जिए, तो जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत सफर बन जाती है। मुस्कुराते रहना, प्यार बांटना और हर पल को एंजॉय करना ही हैप्पी लिविंग का असली मंत्र है। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, रेडियो मस्ती,
3: हिट म्यूजिक ओनली।
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

RM2. Radio Musty. Feels a musty.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: वेलकम टू RM2।
2: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
3: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
4: चेक दिस आउट,
3: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
5: Nimura, nimura, nimura.
6: Check this out.
3: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
3: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
2: नहीं आएगा?
3: नहीं
2: आएगा?
3: नहीं
2: आएगा?
3: आएगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते